नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सुहंदी हर राम राम मेरे बाबला पिर मिल तन मिल वधंदी। श्री राग महला पंजवां संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जियो मित्रा गोबिंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निभै तेरे नाले संग साई हर नाम त्याई बिरथा कोय न जाए मन चिंदे सही फल पाव है चरण कमल चित लाए। जल थल पूर रहया बनवारी काट काट नदर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जीओ मित्रा बिकसागर संसारे। चरण कमल कर बोइथ करते सहसा दुख ना व्यापै गुरपूरा पेटै वडभागी। आठ पहर प्रभ जापै आदस जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारे। नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे मन प्यारिया जीओ मित्रा हर लदे खेप सवली। मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर निश्चल मली हर दर सेवे अलाख्या पेवे निश्चल आसन पाया तह जन्म ना मरण ना आवन जाना संसा दुख मिटाया। चित्र गुप्त का काग दफारिया जम दूता कछु ना चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लदे खेप सवली। मन प्यारिया जियो मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जप परगासो। सिमर स्वामी सुखै गामी इच्छ सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मेले चिरी विछुनिया। अंतर बाहर सरबत रव्या मन उपजिया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संतां संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मिल जीवे मीना हर पिया गाने अमृत बाने सर्व सुखा मन उठे श्री तर पाए मंगल गाए। इश पुन्नी सतगुर तुठे लड़ लीने लाए नौनद पाए नाओ सर्वस ठाकर दीना। नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना। श्री राग के संत महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद डखना। हठ मजाहू मां पिरी पसे क्यों दीदार संत सरनाई लभणे नानक प्राण आधार। संत

दासा ने भावै बिंदर सावै एखन तीरज क्यों करै। नाम बिहुना तन मनहीना जल बिन मछली ज्यों मरै। मिल मेरे प्यारे प्राणे आधारे गुण साध संग मिल गावै। नानक के स्वामी धार अनुग्रह मंत्र अंक समावै। डखना सो हंदड़ो हबठाए कोय न दिसै डुजड़ो खुलड़े कपाट। नानक सतगुर भेट ते संत तेरे बचना नू पिया पार। संतन आधार बाणी बिचारी है जियो सिमरत सास गिरास। पूर्ण विश्वास क्यों मनो विसारी है जियो क्यों मनो विसारी है निमख नहीं टारी है। गुणवंत प्राण हमारे मन बाइंत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे। अनाथ के नाथे सर्व के साथे जप जुवै जन

सुंदर स्वामी धाम भगत विश्राम आसा लग जीवते जियो मन तन गुलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखै बन फीका जानिया भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निध मानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखणा जो तौ कीने अपने तिन्ना को मिलियो है आपे ही आप मोयो हो जस नानक आप सुनियो है संत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोहया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस भए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच्छ पुजाया बौण ना माया होहया कर गै लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखणा साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना भाग मथा है से नानक हर रंग मान दो संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिनको साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गै लीने हर जसो दीने जो ना तावै नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया कथ ना जाय अकथ स्वामी सत कह जाय नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोय जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिसबने अवर ना कोए जो मोहे माया चितलाए दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बने अवर ना कोए हर गुर शरण आई पाई है मन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जना मन पाईया हर किने ना पाया नाओ विच हम मैं

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे दे वैले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुरसरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाई कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिया हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामे ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुर बचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास। सेवक पाए वन जारिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रहरास रहाओ एक ओंकार। सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार। सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतना मूलक पाया गुर का शब्द विचार। जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेव है सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर। हर इक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखै बाहर घर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखमतार। श्लोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल। एक जा गंदे ना लहन एक ना सुत्यां दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का। दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई। तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई। तू आपे आवरदा सबनी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनों जो ले छड़ाई। श्लोक महला पहला। फकड़ जाति फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ। आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लेखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगै मर चलिया। त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना पौड़ी। तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे। दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे। तिन जम काल ना वे आपै जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार स्यो तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके

सरै सरैयत करै बिचार, बिन बूझे कैसे पावे पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर ता मिलै, जामन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझै ते आवै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राध दे, तिन्हों कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहिब कै रंग रहै, कहु न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक सह प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाय। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी

प्यास पौड़ी सो ऐसा हर नाम त्याइए मन मेरे जो सबना उपर हुक्म चलाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर ले छाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए सो गुरमुख नाम जपिया वड भागी तिन निंदक दुष्टो सब पैरी पाए नानक नाम आराध सबना ते वड्डा सब नामै अगे आण निवाए श्लोक महला तीजा वेस करे क्रूप को लखनी मन खोटे कूड़ियार पिर कै पाणे ना चले हुक्म करे गावार गुर कै पाणे जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार मन तन सौपे कंत कहो सब दे तरे प्यार बिन नामे कने ना पाया देखो हृदय विचार नानक सा सुआल्यो सुलखणी जे रावी सृजनहार महला तीजा माया मोह गुबार है तिसदा ना दिसै उरवार ना पार मनमुख ज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार पाल के उठ बहु कर्म कमावै दूजे पाए प्यार सतगुर सेवै अपना पौजल उतरे पार नानक गुरमुख सच समावै सच नाम उरतार पौड़ी हर जल थल महियर भरपूर दूजा नाहे कोय हर आवै करे न्याओ कूड़ियार सब मार कढोए सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए सब हर की करो उसत जिन गरीब अनाथ राख ली ओए जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दियो ए श्लोक महला तीजा।

सोहणी पारहर छोड़ी पतार महला तीजा। शब्द रति सोहागणी सतगुर कह पाए प्यार, सदा रावे परे अपना सच्चे प्रेम प्यार। अत सवाल्यो सुंदरी शोभावंती नार, नानक नाम सोहागणी मेली मिलनहार पौड़ी। हर तेरी सब करे उस्त तो जिन फाथे काढ़िया, हर तुदनो करे सब नमस्कार जिन पापै ते राखिया। हर ने माणिया तू माणो हर डाढ़ी हूं तू डाढ़िया, हर हंकारियां मार निवाए मन मुख मूड साध्या। हर भगता दे वड़ियाई गरीबा नाथिया, श्लोक महला तीजा। सतगुर कह पाणे जो चले तिस वड़ियाई वड़ी होए, हर का नाम उत्तम मन वसै मिट न सकै कोए। किरपा करे जिसे अपनी तिस कर्म प्राप्त होए, नानक कारण करते वस है गुरमुख पूजै कोए। महला तीजा नानक हर नाम जिनी आराध्या, अंधन हर लिवतार। माया बंदी खसम की तिने अगै कमावे कार, पूरा पूरा कर छोड़िया हुक्म सुबारण हार। गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मोख द्वार, मनमुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार। गुरमुख जिनी आराध्या तिनी तरिया पौजल संसार, सब औगुण गुणी मिटाया गुरे आपे बख्शन हार। पौड़ी हर की भगता प्रतीत हर सब के जानदा, हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचारदा। काड़ा अंदेसा क्यों की जय जा नाही धर्म मारदा, सच्चा साहेब सच न्याओ पापी नर हारदा। साला हो भगतो कर जोड़ हर भगत जन तारदा, श्लोक महला तीजा। अपने प्रीत मिल रहा यंत्र रखा और तार, साला ही सो प्रभ सदा सदा गुर कै हित प्यार। नानक जिस नजर करे तिस मेल लए, साई सुहागण नार महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है जा को नजर करे, मानस ते देवते पए तया नाम हरे। हौ मैं मार मिलायन गुर कै सब तरे, नानक सहि समायन हरे अपनी कृपा करे। पौड़ी हरे अपनी भगत कराए वड़ियाई वेखालियन, अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन। हर भगतां नो दे आनंद थिर करी बहालियन, पापियां नो ना दे थिर रहन चुन नरक कोर चालियन। हर भगतां नो दे प्यार कर अंग निस्तारियन, श्लोक महला पहला। कबुद डूमणी कुदया कसायण, पर निंदा कट चूहड़ी मुठी क्रोध चंडाल। कारी कड्डी क्या थी है जा चारे बैठिया नाल, सच संयम करनी कारा नावन नाव जपेही। नानक अगै उत्तम सेई जे पापा पंद ना देही। महला पहला। क्या हंस क्या बगला जा कौ नदर करे, जो तिस पावे नानका कागो हंस करे। पौड़ी कीता लोड़ी काम सो हर पै आखी, कार्ज दे सवार सतगुर सच साखी है। संता संग निधान अमृत चाखी है, पै पंजन मेहरवान दास की राखी है। नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखी है, श्लोक महला तीजा। जियो पिंड सब तिसका सब सह दे आधार, नानक गुरमुख सेविय सदा सदा दातार। हौ बलिहारी तिन कहो जिन त्याया हर निरंकार, ओना के मुख सद उजले ओना नो सब जगत करे नमस्कार। महला तीजा। सतगुर मिले उल्टी पई नवनिध खर्चियो खाओ, अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिरन निज कर वसै निज थाए। अनहद तुनी सद वज दे उनमन हर लिव लाए, नानक हर भगत तिन्ना कै मन वसै जिन मस्तक लिखिया तुर पाए। पौड़ी हौ टाडी हर प्रभ खसम का, हर कै दर आया हर अंदर सुनी पुकार। टाडी मुख लाया हर पुछिया टाडी सद कै, केते अर्थ तू आया नित देवो दान दयाल प्रभु। हर नाम त्याया हर दाता हर नाम जपाया, नानक पैनाया सुध। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग कबीर जियो का, एक सवान कह कर गावना।
ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਧਿਕ ਲਾੜ ਧਾਰ ਭਿਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾ ਹਸੈ ਐਸਾ ਤੈ ਜਗ ਪਰਮ ਲਾਇਆ ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ ਜਾ ਮੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਰਹਾਓ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੋੜ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਚੋ ਮਰਨਾ ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਇਨ ਬਿਦ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤਰਲੋਚਨ ਕਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਨ ਆ ਗਲੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਰਾ ਮਰਨ ਪਉ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਬਿਕਸੈ ਕਮਲਾ ਜਿਉ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਪਟ ਨਰਾ

एक खिन हृदय सांत ना आवै जोगी, बहुड़ बहुड़ उठत आवै जियो। कर कृपा मोए साध मिलाया, मन तन शीतल तीरज पाया। प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर, हर मंगल नानक गावै जियो। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म परंपर देवा, अगमा गोचर लाख्या पेवा। दीन दयाल गोपाल गोविंदा, हर त्यावो गुरमुख गाती जियो। गुरमुख मधसूद निस्तारे, गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे। दयाल दमोदर गुरमुख पाईऐ, होरत कितै ना पाती जियो। निरहारी केशव निरवैरा, कोट जना जाके पूजे पैरा। गुरमुख हृदय जाके हर हर, सोई भगते एकाती जियो। अमोघ दर्शन बेअंत अपारा, वट समरस दादा तारा। गुरमुख नाम जपिए तित तरिए, गत नानक विरली।

पूरा जियो। रेन संतन की मेरा मुख लागी, दुरमत बिन सीख बोध्या पागी, सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से कूरा जियो। माज महला पंजवा, विसर नाही ए वड़दाते, कर कृपा भगतन संगराते, दिन सरैन ज्यो तुद ते आई, एहो दान मुहे करना जियो। माटी अंधी सुरत समाई, सबके दिया पलिया जाई, आनंद बिनोद तोज तमासे, तुद पावै सो होना जियो। जिस दा दिता सब कुछ लैना, शक्ति अमृत भोजन खाना, से सुखाली शीतल पवना, सहज के रंग करना जियो।

हर रुखी रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नजर निहाले। खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो। संता सेती रंग न लाए, साक्त संग विकर्म कुमाए। दुलभ देह खोई अज्ञानी, जड़ अपनी आपो पाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला। कर कृपा नानक गुण गावै, राखो सरमिया साड़ी जियो। माज महला पंजवा, चरण ठाकर के हृदय समाणे। कल कले सब दूर पयाने, सांत सुख सहज तुनि उपजी। साधु संग निवासा जियो।

माज महला पंजवां सबे सुख पए प्रभु तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाध लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़े अंतर वर्त नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को बिरलाया पछाने जियो प्रमृण की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाने जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माने जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिस कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध स्याणप किशु ना जापे अपने संतान नो आप सहाई प्रभ परम पुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच धियाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वट पागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंतना जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सदही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी सुमूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई।

माज महला पंजवा अथे तू है अगे आपे जी जंत्र सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं तरे ओट तो मारी जियो रसना जब जब जी वै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन्ही सुख पाया सो जन्म ना जुवै हारी जियो नाम अवखद।

प्रेम भगत जिसका मन लागी गुण गावे अंदर जागी बाहां पकड़ो ते स्वामी मिले जिसका मस्तक लेना चरण कमल भगता मन मुठे विन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांछे नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाई है जिस मृतवार ने चल पाई है नानको प्रभ हो दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदिया महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगह महल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा सच्चे मन पति आवणिया हाँ वारी जियो वारी शब्द सुहावने आ अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमति मन वसावने आ रहाओ ना को मेरा हो किसकेरा साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा हो मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछोतावने आ हुक्म पछाण सो हर गुण वखाण गुर कै शब्द नाम निशाण सबना कादर लेखा सच्चै छूटस नाम सुहावने आ मनमुख पूला ठौर ना पाए जमदर बद्दा चोटा खाए बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवने आ सागत कूड़े सच ना पावे दुबदा बांदा आवे जावे लिखिया लेखना मेटे कोई गुरमुख मुक्त करावने आ पे येड़े पिर जातो नाही झूठ विछुन्नी रोवे ताही अवगण मुठी महल ना पाए अवगण गुण बख्सावने पेयड़ जन जाता प्यारा गुरमुख बूझे तत बिचारा आवन जाना ठाक रहाए सच्चा नाम समावने गुरमुख बूझे कथ कहावे सच्चे ठाकर साचो पावे नानक सच कह बेनंती सच मिले गुण गावने माज महला तीजा कर पहला कर्म होवे सतगुरु मिलाए सेवा सुरत शब्द चित लाए हाँ मैं मार सदा सुख पाया माया मोह चुकावने हाँ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारने गुरमती प्रगास हुआ जी अंदर हर गुण गावने रहाओ तन मन खोजे ता ना उपाए तावत राखे ठाक रहाए गुर की बाणी अंदर गावे सहजे पद करावने इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिलैता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द वजावने सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई आन दिन सदा रह रंगराता दर सच्चा सोजी पावने पाप पुन की सार न जानी दूजे लागी परम पुलाणी अज्ञानी अंदा मग न जाने फिर आवन जावने गुर सेवा ते सदा सुख पाया हाँ मैं मेरा ठाक रहाया गुरसाखी मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलावने हाँ मैं मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ते आवने जीवन मरना सब तो दैताई जिस बख्से तिस दे वड़ियाई नानक नाम ते आए सदा तू जम्मन मरण सवारणिया। माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगमिया पारा बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख होवे सोई बुझे गुण कै गुणी समावने हाँ वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावने जो सच लागे से अंदन जागे दर सच्चै सोभा पावने रहाओ आप सुनै ते आपे वेख जिसनों नदर करे सोई जन लेख आपे लाए ले सो लागे गुरमुख सच कमावने जिस आप भुलाए सो किथे हथ पाए पूर्व लिखिया सो मिटना ना जाए जिन सतगुर मिलिया से वडभागी पूरे करम मिलावणिया पेयड़ तन अंदन सुती कंत विसारी अवगण मुत्ती
ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਪੇਈ ਅੜੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਾਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ ਸਤ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਕਿਲਬੇ ਕਾਠ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਦਰ ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਾਂ ਗਿਣਦੀ ਐ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਫੁਨ ਦੂਐ ਤੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਆਪ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪ ਕਰਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਭਿੰਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਜੋ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਇਆ ਸੱਚੈ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਇਹੋ ਜਗ ਭੂਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜੈ ਲੁਭਾਇਆ ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਮ ਭੂਲਾ ਬਿਨਾਂ ਵੈ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਜੋ ਰੰਗਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗਚਾਰੇ ਜਾਤੇ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माझ महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चै शब्द सच्चा सालाही सच्चै मेल मिलावणिया हाँ वारी जियो वारी सासा लाहणिया सच ते आए नो से सच राते सच्चे सच समावणिया रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन नि चलो निजकर वासा पावणिया गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया जो सच राते तर सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चै शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवै ओह अगम अगोचर शब्द सुद होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावणिया पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले सुद ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया माझ महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कनेरे तू एको नेह चलो अगमया पारा गुरमती बूझ बुझावणिया हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आ बुझावणिया रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै ना मरना होवै सहजे सच समावणिया माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सद रह समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निह चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया सच सालाही अवरना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचार।

माया मोहे जोहया जमकाले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने आ। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सह सुभाए। बाणी वजाए शब्द वजाए, गुरमुख भगत आए पावने आ। बहुताल पूरे वाजे वजाए, ना को सुने न मन वसाए। माया कारण पेड़ बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावने आ। जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जुगता। गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावने आ। गुरमुख भगत जुग चारे होई, होर भगत ना पाए कोई। नानक नाम गुर भगती पाई है, गुर चरणी चित लावने आ। माज महला तीजा, सच्चा सेवी ससा लाही। सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पाए न। गुरमत मन वसावने आ। हाँ वारी जियो वारी, सुख सह समाध लगावने आ। जो हर सेवै से सदा सोहै, सोभा सुरत सुहावने आ। राओ सब को तेरा भगत कहाए, सही भगत तेरे मन पाए। सच बाणी तुदै सालाहनो, रंग राते भगत करावने आ। सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिले ता चूकै फेरा। जा तुद पावै ता नाए रिचावै, तू आपे नाउ जपावने आ। गुरमत्ती हर मन वसाया, हरक सोख सा मोह गवाया। एक सस्यों लिव लागी सदही, हर नाम मन वसावने आ। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नवनिध नाम वस्या मन आए। पूरे भाग सतगुर पाया, सब दे मेल मिलावने आ। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेलै गुरमुख जाता। तू आपे देवै नाम वडाई, नाम रते सुख पावने आ। सदा सदा साचे तुद सा लाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही। एक सस्यों मन रहा समाए, मन मनए मने मिलावणिया। गुरमुख होवै सो सालाहे, साचे ठाकर वे प्रवाहे। नानक नाम वसै मन अंतर, गुर सबदी हर मिलावणिया। माज महला तीजा, तेरे भगत सोहै साचे दरबारे। गुर कै शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहै दिन राती। गुण कै गुणी समावने आ। हाउ वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावने आ। हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा, हाउ मैं मार मिलावने आ। रहाओ हर जियो साचा साची नाई, गुर प्रसादी किसै मिलाई। गुर शब्द मिले से विछड़े नाही, सहजे सच समावने आ। तुते बाहर कशु ना होए, तू कर कर वेख्या जाने सोए। आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावने आ। कामन गुणवंती हर पाए, पै पाए सिंगार बनाए। सतगुर सेव सदा सोहागण, सच उपदेश समावने आ। शब्द विसारण

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा। गुरमुख वणजे सदा वापारी लाहा नाम सद पावणिया। आपे वथ राखै आपे दे गुरमुख वणजै के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावणिया। माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर निर्मल सदा गुणदाता हर गुण मैं आप समावणिया। हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावणिया। सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुर हौ मैं भरम चुकाया। अंदन नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावणिया। गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावणिया। जम जा गाती दूजे पाए कर लाए नाम पूले देस जाए। कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावणिया। पेयड़ै प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही। खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावणिया। पेयड़

अवर ना कोई गुर प्रसाद करे नाम देवै नामे नाम समावणे आ तू आपे सच्चा सिरजनहारा भक्ति परे तेरे भंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजै सह समाद लगावणे आ आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुसा लाही प्रीतम मेरे तुद बिन अवर ना कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणे आ आगमया गोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करै तू लह मिलाई पूरे गुर कै शब्द तिहाई है शब्द सेव सुख पावणे आ रसना गुणवंती गुण गावै नाम सलाहे सच्चे भावै गुरमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे सोभा पावणे आ मनमुख कर्म करे अहंकारी जुवै जन्म सब बाजी हारी अंतर लो महा गोबारा फिर आवण जावणे आ आपे करता दे वडियाई जिनको आप लिख तुर पाई नानक नाम मिलै पौ भंजन गुर शब्दी सुख पावणे आ माज महला पंजवा घर पहला अंतर अलख न जाई लिखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगमै गोचर सब ते उचा गुर कै शब्द लिखावणे आ हाँ वारी जियो वारी कल मैं नाम सुनावने आ संत प्यारे सच्चे तारे वडभागी दर्शन पावने आ रहाओ साधक सिद्ध जिसै को फिर दे ब्रह्मे इंद्र त्याय निहरदे कोट ततीसा खोजै तां कहो गुरमिल हिरदय गावने आ आठ पहर तुद जापे पवना धरती सेवक पायक चरना खानी बाणी सर्ब निवासी सबना कै मन पावणे आ साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द सियापै जिन पिया से तृपता से सच्चे सच्चा गावणे आ तिस घर सहजा सोई सोहेला आनंद विनोद करे सदकेला सो धनवंत।

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाग ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवा, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन निह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभु बनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करे सोई सुख पावण्या, हां वारी जियो वारी गुरमुख मंतन पावण्या, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावण्या, रहाओ तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा, थान थनंतर तू है इको एक वरतावण्या, सगल मनोरथ

जो हर कीता अपना तने गुसाई जपना सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिसद भाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया एह रस भोगण पातशाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कारै लाग जियो करता मन वसाया जन्मै का फल पाया मन पावंदा कंत हर तेरा थिर होवा सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै भंजन की सरनाया लाए अंचल नानक तारियां नु जिता जन्मया पार जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद माझ महला पंजवां घर तीजा हर जप जपे मन धीरे रहाओ सिमर सिमर गुर देओ मिट गए पै दूरे सरन आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे झूरे चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे घट घट एक वर्तदा जल थल महियल पूरे पाप बिनासन सेवया पवित्र संतन की धूरे सब छड़ाई खसम आप हर जप पई ठरूरे करते किया तपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रत्ता सच नाए हर वेखै सदा हजूरे बारह माहा माज महला पंजवां घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम चार कुंट दह दिस भ्रमे थके आए प्रभ की साम तेन दुदै ते बाहरी कितै ना आवै काम जल बिन साख कुमलावती उपजै नाही दाम हर नहा ना मिलिए साजने कत पाइय विश्राम जित घर हर कंत ना प्रगटई पठ नगर से ग्राम सर्ब सिंगार तंबूल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निचल ताम चेत गोविंद आराधिया होवै आनंद कणा संत जना मिल पाईऐ रसना नाम भणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा एक खेनु तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल थल महियल पूरिया रव्या विच वणा सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिनी राव्या सो प्रभु तिन्ना पाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तिसकै पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बिशो हो हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो पुत्र कलतर ना संग तना हर अवनासी ओहो पलच पलच सगली मुई झूठै तंदै मोहो एक सहर के नाम बिनु अगे लइए खोहे दैव सार विगुचना प्रभ ने अवर ना कोए प्रीतम चरणी

हर जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन। आपन लिया जे मिले विचड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन। हर जेठ रंगीला तिस धणी जिसकै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दोया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास। जिहा बीजै सो लुणै मथै जो लिखियास रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास। जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। वन तेन प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार। जिनी सखिए प्रभ पाया हो तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार। सावन तिना सुहागणी।

नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देण कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनंतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरै पईए तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम्या गाद बोध किशंतना पारावार सेवा सा तिस भावसी संता की होए शार दीना ना दयाल देव पत ते उदारण हार आज जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंत्र अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार।

गए से कीत पुकारिता उड़िया हंस दसायरा आया गया मोया ना पिछे पतल सद्यो का नानक मनमुख अंध प्यार बाजगुरु डुबा संसार महला पहला दस बाल तन बीस रवण तीसा का सुंदर कहावे चालीसी पर होए पचासी पग खिसै।

तू आपे खेल करे सब करते कै दूजा अख बखानी है जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोलै वेण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणी है नानक गुरमुख नगरी आया हर इको सूट सुजानी है पौड़ी।

क्या खादा है क्या पैदा होए, जामा नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या से सुखाली, की जय भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेवखवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश पवड़ी, जाति रह क्या हाथ सच परखी है, मवरा होवे हाथ मरिय चखी है, सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म ने सरदार दर दीवाणी है, फरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज विचार शब्द सुनाया, एक होए असवार एक ना साखती, एक नी बदे पार एक ना ताकती, श्लोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया कर लया तन झाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसने आए बेहट, जो दर रहे सो बरे, नानक अजब डेठ महला पहला, वेख जे मिठा कटिया कट कुट बदा पाए, खुंडा अंदर रख के दिन सो मल सजाए, रस कस टटर पाइए तपै तैवल लाए, पीसो फूक समालिए दिचै विजा लाए, नानक मिठै पतरिए वेखो लोका आए, पवड़ी एक ना मरना चेत आस घनेरिया, मर मर जमै नित किसै ना केरिया, आपन रै मन चेत कहन चंगेरिया, जबरा जै नित नित मन मुख हेरिया, मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया, सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी, करसन तख्त सलाम लिखिया पावसी, महला पहला श्लोक, मच्छी तारू क्या करे पंखी क्या आकाश, पत्थर पाला क्या करे खुसरे क्या करवास, कुत्ते चंदन लाई है पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाई है पढ़िए स्मृत पाठ, अंधा चानन रखिए दीवे बलै पचास, चौने सोई ना पाइए चुन चुन खावे कास, लोहा मारन पाइए टह ना होए कपास, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश, महला पहला, कहा कंचन टुटे सार, अग्नि गंढ पाए लोहार, गोरी सेती टुटे पतार, पुत्ती गंढ पवै संसार, राजा मंगे दिते गंड पाए, भुखिया गंड पवे जा खाए, काला गंड नदियां मीह झोल, गंड प्रीति मिठे बोल, बेदा गंड बोले सच कोए, मुया गंड नेकी सत होए, एत गंड वरते संसार, मूर्ख गंड पवे मुहे मार, नानक आखे हो बीचार, सिफती गंड पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज कै आपे करे बीचार, एक खोटे एक खरे आपे परखणहार, खरे खजाने पाईए खोटे सटिए बार वार, खोटे सच्ची दरगह सुटिए किसे आगे करे पुकार, सतगुर पिछे भज पवै एहा करनी सार, सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार, सच्ची दरगह मनियन गुर कै प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करे जो आ बख्शे करतार, श्लोक महला पहला, हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाए कराया, मेर वद बाद सहा अफजू खुदाए, एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साध का तरा, अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला, ना दादे देहां दे आदमी ना सबत जेर जिमी, अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला, ना सूर सस मंडलो ना सबत दीप नह जलो, अन्न पावण थिर ना कोई, एक तुई महला पहला, नारिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला, परंदे ना ग्रह जार दरख्त आव्यास कर, देहंद सुई एक तुई महला पहला, नानक ललार लिखिया सोए मेटना सकै कोए,
ਕਲਾ ਧਰੈ ਹਿਰੈ ਸੁਈ, ਏਕ ਤੁਈ ਪੌੜੀ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਾਣਿਆ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਣਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਕੂੜਿਆਰ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣਿਆ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਪਾਰਖ ਆਪ ਜਿਨ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਿਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ

करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुवा जेते जी जीवे लै साहा जीवा ले ताके असा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिरा। महला पहला एक मांसाहारी एक तृण खाए एक नाशक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मैं मिटिया खाहे एक पौन सुमारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार। जीवे दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए। पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम ते आई है। दूजी कार लग जन्म गवाई है विणना में सब विस पैजै खाई है। सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है। दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा साला है पत स्यों जाई है। सलोक महला पहला तुद पावे ता वावे गावे तुद पावे जल नावे जा तुद पावे ता करे बेपूता सिंगी नाद वजावे जा तुद पावै ता पड़े कतेबा मुला सिह कहावै जा तुद पावै ता होवै राजे रस कस बहुत कमावै जा तुद पावै तेग बगावै सिर मुंडी कट जावै जा तुद पावै जाय दसंतर सुन गल्लां कर आवै जा तुद पावै ना इरचावै तुद पाणे तू पावै नानके कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावै। महला पहला

सो किश करै, हुक्मे आवै हुक्मे जाए, आगै पाछै हुक्म समाए, हंस हित आसा असमान, तिस विच भूख बहुत नैसान, पौ खाना पीना आधार, विण खादे मर होहे गवार।

गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख कहना है किस कहन ना जाए तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे करनी कामण कर मन ले साह संजोग वियह वियोग सच संतत।

जय कारण तट तीर्थ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही। पड़ पट पंडित बाद वखाण है, भीतर होंदी वस्त न जाण है। हो ना मुआ मेरी मुई बलाए, ओहो ना मुआ जो रया सुमाए। कहो नानक गुर

तीन अवस्था कह वखियान, तुरिया अवस्था सदगुर ते हर जान। राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई। बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जा कह हृदय वसिया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निराश बुझाया। दीना नाथ सर्व सुखदाता।

बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन ना मैं दुखिया चलिया रोए। रसना हरस चाखिया सहज सुभाए, गुर कृपा ते सच समाए। साचे राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवै निर्मल तार। नाम समावै जो पांडा होए, ऊंदे पांडा टिकै ना कोए। गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जे शब्द प्यास। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, एक गावत रहे मन साध ना पाए। हम मैं विच गावै बिरथा जाए, गावन गावै जिन नाम प्यार। साची बाणी शब्द विचार, गावत रहे जे सतगुर पावै। मंतन राता नाम सुहावै रहाओ। एक गावै एक भगत करे, नाम ना पावै बिन असनेह। सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पर राखिया सदा और तार। भगत करै मूर्ख आप जनावै, नच नच टपै बहुत दुख पावै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए। मेरा प्रभ साचा सब जाने, नानक बख्शे नाम पछाण। गौड़ी गुआरे री महला तीजा,

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नौ निद पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए, हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सही समावे सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन मुखियंदा आवै जाए, हर हर नाम देवे जन सोए, अंदन भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावे सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावे कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरुख संसारे, आप उदरे कुर सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमै मार कमल प्रगासा, अनहद वाजे निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करे आचार, बिन नामै त्रिग त्रिग हंकार, बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटे गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे, तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए, गुर का शब्द ना चीने ओ फिर जो नी पाए। गुरमुख आ पछाणिया हर नाम वसया मन आए, अंदर भगती रतिया हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरै प्रतीत होए, हो मैं तजे वेकार, जन नान करमी पाईया नु हर नामा भगत भंडार। गौड़ी बैरागण महला तीजा, पेई अड़ै दिन चार है, हर हर लिख पाया सोभावंती नार है। गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण संभलै, साहुरै वास पाया, गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया। ससरै पेई पिर वसै, कहो किद बिद पाईऐ, आप निरंजन अलख है, आपे मिलाईऐ रहाओ। आपे ही प्रभ देह मातु हर नाम ते आई है, वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाई है। हो मैं दुबदा बिनस जाए, सहजे सुख समाई है, सब आपे आवरदा आपे नाए लाई है। मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान अयाने, सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने। गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने, मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे। मेरा हर प्रभ लेख लिखाया, तुरमस्तक पूरा हर हर नाम ते आया, भेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंधु बीरा, हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा। गौड़ी बैरागण महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया, हर तत् बिचारा मत मिलीण प्रगट भई, जपना मुरारा। सेव सकत मिटाइया चूका दियारा, तुरमस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा। हर कित बिद पाईऐ संत जना, जिस देख हो जीवा, हर बिन चसा ना जीवती, गुर मिलो हर रस पीवा रहाओ। हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गत कीनी, हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी। तन तन गुर सतपुरख है,

हरी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकटला से नाही हर दूर रहाओ। हरे आपे शब्द सुरत धुन आपे हरे आपे वेखे विकसै आपे हरे आप जपाए आपे हर जापे हरे आपे सारंग अमृत तारा हर अमृत आप ही आवनहारा हरे आप करे आपे निस्तारा हरे आपे बेड़ी तुलहा तारा हरे आपे गुरमति निस्तारा हरे आपे नानक पावै पारा गौड़ी बैरागण महला चौथा। साओ हमारा तू तनी जैसी तू रास दे तैसी हमले हर नाम जय रंग स्यों जे आप दयाल होए दे हमन जारे राम के हर वणज करावै दे रास रे रहाओ। लहा हर भगतन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जागाती नेड़ ना आया। होर वणज करै वापारिये अनंत तरंगी दुख माया ओए जिहै वणज हर लाया।

आओ घट घट रमैया रमत राम राए गुर शब्द गुरु लिव लागे हम मंतन देवो काट गुरु कहो मेरा परम्पो गुरबचनी भागे अंधियारे दीप ज्ञान जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञाना देरा बिनस बिनासियो कर वस्त लही मन जागे साकत बद्धक माया तारी तिन जम जोहन लागे और सतगुर आग्या सीसना बेचिया ओ आवै जाया भागे हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगे जन नानक की लजपात गुरु है सिर बेचियो सतगुर आगे गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत गुर मिलिया आप गवाया हम मैं रोग गया सुख पाया तन धन गुरु हर राया राम गुर कै बचन हर पाया रहाओ मेरे हीर है प्रीत नाम राय की गुरमार्ग पंथ बताया मेरा जियो पिंड सब सतगुरे आगे जिन विछड़िया हर गल आया मेरा अंतर प्रीत लगी देखन कहो गुर हिरदे नाल दिखाया सहजानंद भया मन मोर है गुरे आगे आप विचाया हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजा सबदा नहद गुरमत मनुआ गावे वडभागी गुर दर्शन पाया तन धन गुरु लिव लावै गुरमुख हर लिव लावै रहाओ हमरा ठाकर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावै हम मलमल तोवै पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावै हृदय गुरमत राम रसायण जेवा हर गुण गावै मन रसक रसक हर रस आगा।

हर हर नाम जब जंतार्यो अग्न सागर गुर पर उतार्यो रहाओ कर कीर्तन मन शीतल भय जन्म जन्म के किल विख गए सर्व निदान पेखे मन माहे अब टूंडन काहे कौ जाए प्रभ अपने जपै दयाल पूर्ण होई सेव काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर।

साध संकै नाही नेर, लख चौरासी ब्रह्मता फेर, एक है जल फहाए पंखी, रस रस पोकर है बोरंगी, कहो नानक।

नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नान कर जाता। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधो, चाखत होए रह बिस्मादो। अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कत हूं जाइए, साध संगत वडभागी पाइए। आठ पहर जेहवे आराध, पार ब्रह्मो ठाकरे आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनिया मोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोडे। आन ना रस कस लवे ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार। इस ही मध्य बस्त्या पार, इस ही पीतर सुनियत साहो। कौन बापारी जा कहुआ विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी। अमृत भोजन करे आहारी रहाओ। मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय।

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जा मिले साहे, कहो नानक गुर कै वेसाहे। गौड़ी महला पंजवा ग्वारेरी, रैन दिन सो रहे करंगा, प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन, तृप्ता गवन हर कै दर्शन। हर संग्राते मंतन हरे, गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार, एक निहार आज्ञाकार। एको बनजो एको व्यवहारी, अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहूते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते। दिसे सब मैं सब ते रहते, पार ब्रह्म का होए ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखाना, आगाध बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

रे मन मेरे तू ता को सेव आद पुरख अपरंपर देव तेसी उपर मन कर तू वासा आजुआ जा का प्रवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुरमर सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एका टेक मेरा मन चीत जिस किश करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे प्रवाह गुर कृपा ते मुहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दास तुम ठाकर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवा जा को तुम पै समर्थ अंगा ताको कछ नाही का लंगा माधो जा को है आस तुम्हारी ताको कछ नाही संसारी रहाओ जा कै हृदय ठाकर होए ताको सहसा नाही कोए जा को तुम दीनी प्रभ धीर ताकै निकटना आवै पीर कहो नानक मैं सो गुर पाया पार ब्रह्म पूर्ण देखाया गौड़ी महला पंजवा दुलभ देह पाई वडभागी नाम न जपै ते आत्म घाती मर ना जाही जिन्ना बिसरत राम नाम बिहुन जीवन कौन काम रहाओ खात पीत खेल तो हस्त विस्थार कवन अर्थ मृतक सिंगार जो ना सुने जस परमानंदा पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया केवल नाम रिद महे समाया गौड़ी महला पंजवा काकी माई काको बाप नाम तारीक झूठे सब साक काहे को मूर्ख पखलाया मिल संजोग हुक्म तू आया रहाओ एका माटी एका जोत एको पवन कहां कौन रोत मेरा मेरा कर बिल्ला ही मरण हारो जियरा नाही कहो नानक गुर खोले कपाट मुक्त पै बिन से ब्रह्म थाट गौड़ी।

बिन भगवंत नाही अनकोए, मारा राखे को सोए रहाओ। गुर के चरण हृदय उरतार, अग्न सागर जप उतरै पार। गुरमूर्त स्यों लाए ध्यान, इहां उहां पावै मान। सगल त्याग गुरसरनी आया, मिटया देसे नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवां, जिस सिमरत दुख सब जाए। नाम रतन वसै मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी। साधु जन राम रसन वखाणी, रहाओ। इकस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सखा कर एक, हर हर अखर मन मैं लेख। रव रहे आ सरबत स्वामी, गुण गावे नानके अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, पै मैं रचियो सब संसारा। तिस पौ नाही जिस नाम आधारा, पौ ना व्यापै तेरी सरना। जो तुद पावै सोई करना, रहाओ। सोग अर्ख मैं आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रपाणा। अग्न सागर महाव्यापै माया, से शीतल जिन सतगुर पाया। राख ले प्रभ रखण हारा, कहो नानक्या जंत विचारा। गौड़ी महला पंजवा, तुमरी कृपा ते जपिए ना, तुमरी कृपा ते दरगै था। तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा।

पार ब्रह्म अपरम्पर स्वामी सगल कटाके अंतरजामी करो अरदास अपने सतगुर पास नानक नाम मिले सच रास गौड़ी महला पंजवां कण बिना जैसे थोथर तुखा नाम बिहून सुने से मुखा हर हर नाम जपो नित प्राणी नाम बिहून त्रिगदेह बेगानी रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग परत बिहून कहां सोहाग नाम बिसार लगे अनसवाए ताकि आसना पूजे काए कर किरपा प्रभ अपनी दात नानक नाम जपै दिन रात गौड़ी महला पंजवां तू समर्थ तू है मेरा स्वामी सब किस तुम ते तू अंतरजामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरै जन कोट रहाओ जेते जी ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सुख नेरे जो किश वरतै सब तेरा पाणा हुक्म बूझै सो सच समाणा कर कृपा दीजै प्रभदान नानक सिमरै नाम निधान गौड़ी महला पंजवां ताका दर्श पाईऐ वडभागी जां की राम नाम लिव लागी जां कै हर वसिया मन माही ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ सर्व निधान राखे जन्माहे ताकै संग किलविख दुख जाए जन की महिमा कथी न जाए पार ब्रह्म जन रया समाए कर कृपा प्रभ बिनो सुनिजै दास की तूर नानक कहो दीजै गौड़ी महला पंजवां हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसै मन आए पज मन मेरे को नाम जी तेरे कै आवै काम रहाओ रैन दिनस गुण गाओ अनंता गुरपूरे का निर्मल मंता छोड़ उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर तेई जन तरे नानक जा कौन दर करे गौड़ी महला पंजवां हिरदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सदगुर मिल।

हर सिमरत पूर्ण पद पाया साह संग पै परम मिटाया जत कत देखो तत रहया समाए नानक दास हर

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन लै जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक सही जन।

साधु संग करो सबको, ए सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत, प्रांबिन से गाए गुणनीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जाका सिमरन जमने डरुआ रहाओ। चरण कमल प्रभु दा निवास।

गौड़ी महला पंजवा नित प्रत नावन राम सर की जय। चोल महारस हरे अमृत पी जय रहाओ। निर्मल उदक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूर्ण सब काम। संत संग तै गोष्ट होए, कोट जन्म के किलविख खोए। सिमरै साध करै आनंद, मंत्र रविया परमानंद। जिसै प्राप्त हर चरण निधान, नानक दास तिसै कुर्बान। गौड़ी महला पंजवा, सो किछ कर जित मैल ना लागै। हर कीर्तन में एहो मन जागै, रहाओ एको।

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा। नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण पई सेव रहाओ, सीतलाते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, तान्यो मस्तक।

जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्थिर पय बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इसनान, लाख अरब खरब दीनो दान। जामन वस्यो हर को नाम, सगल पवित गुण गाय गोपाल। पाप मिटाए साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत बहुत और दो तब साधन साधे। अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आराधे। सिमरत शास्त्र वेद बखाने, जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने। नाम जपत प्रभ स्यो मन माने, आगाध बोध हर अगम अपारे। नाम जपत नाम हृदय बिचारे, नानक को प्रभ कृपा तारे। गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया। चरण कमल गुरुदेव बसाया, गुरु गोबिंद पार ब्रह्मपुरा। तिसे अराध मेरा मन धीरा, रहाओ आन दिन जपो गुरु गुर नाम। ताते सिद्ध पय सगल काम, दर्शन देख शीतल मन भये। जन्म जन्म के किलबिख गए, कहो नानक कहां पै भाई। अपने सेवकी आप रखाई, गौड़ी महला पंजवा। अपने सेवको आप सहाई, नित प्रत पारे बाप जैसे माई। प्रभ की शरण उबरे सब कोए, करन करावन पूर्ण सज सोए। रहाओ आप मन बसिया करने हारा, पै बिरसे आत्म सुख सारा। कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाथे। कह ना जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास दा सरनाई। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद। राम को बल पूर्ण भाई, ताते बिरथा ना व्यापै काई। रहाओ जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रपत गवाई, नानक हर गुण निरपौ गाई। गौड़ी महला पंजवा, पुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत गै लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवणन सुरत नैन सुंदर नहीं। आरत द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ करना मैं। साजन मीत पिता मैं तरिया, चरण कवल हृदय गह नानक। पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दै गुसाई मीतला, तू संग हमारे बास जियो। रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुखदातया, निमख निमख बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्तो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सदी दीन दयाल। क्या सुख तेरे समला, कवन विधि विचार। शरण समाई दास हित, ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अहिट सिद्ध, नाम महारस माहे। सो प्रसन्न पय के सवा, सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंध पो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिखतरिया संसार। गौड़ी बैरागण रहोए के, शंत के घर। महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। है कोई राम प्यारो गावै, सर्व कल्याण सुख सच पावै। रहाओ बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले कहूं एक लिव लागी। जिन हर पाया सेवट भागी, ब्रह्मादक सनकादक चाहै। जोगी जति सिद्ध हरिया है, जिसे प्राप्त सो हर गुण गा है। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, वड़ भागी हर संत में।

नानक मांगत नाम आधारे। हरा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन गुण प्राण पात मिलो मेरी माई, रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। नाहन दर्ब ना जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई। खोजत खोजत पई बैरागन, प्रभ दर्शन कहो फिरत तसाई। दीन दयाल किरपाल प्रभ नानक, साह संग मेरी जलन बुझाई। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती। कौ संत मिलै वड़ भागी, रहाओ मन अर्पो तन राखो आगै। मन की मत मोहे सगल त्यागी, जो प्रभ की हर कथा सुनावै। आन दिन फिराओ तिस पिछै वैरागी, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे। भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक। जन्म जन्म की सोई जागी, गौड़ी महला पंजवा। निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शरण गहो पूर्ण। राम रतन हियरे संग राख, रहाओ भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज। आतीखण मोकी फास, काटनहार जगत गुरु गोविंद। चरण कमल ताके करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रप्रीतम। दीना ना सुनो अरदास, कर गै लेहो नानके स्वामी। जियो पिंड सब तुमरी रास, गौड़ी महला पंजवा। हर पेखन को सिमरत मन मेरा,

करो, दास दासन की अनक पांत करो नेहोरा। तुला तहार तोले सुख सगले, बिन हर दर्स सबो ही थोरा। संत प्रसाद गाय गुण सागर, जन्म जन्म को जात बहोरा। आनंद सुख पेट तहर नानक, जन्म कृतार्थ सबल सवेरा। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। केन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सह सुखदाता, मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया, विच पड़दा हूं मैं पाई। माया मोहे सबो जग सोया, एहो परम कहो क्यों जाई। एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई। एक बस बिन पंच दुहेले, ओ बसदा गोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौ पाई। अन क्यो पाव करे नहीं पावै, बिन सतगुर सरनाई। जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिव लाई। पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन बिद मिलै गुसाई, सहज पया प्रम खिन मैं नाठा। मिल ज्योति जो समाई, रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा। ऐसो परचो पायो, करी कृपा दयाल बीठ लै। सतगुर मजै बतायो रहाओ, जात का देखो ताता तुम ही। मोहे एहो विश्वास होए आयो, कै पै करो अरदास बेनती, जो सुनतो है रगरायो। लयो सहसा बंधन गुर तोरे, ता सदा सह सुख पायो। होना सा सोई फुन होसी, सुख दुख कहां दिखायो। खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा, गुर पर्दा खोल दिखायो। नाव निध नाम निधान इकठाई, तो बाहर कैठे जायो। एक कनक अनक भांत साजी, बहु प्रकार रचायो। कहो नानक परम गुर खोई है, एक तत्त तत् मिलायो। गौड़ी महला पंजवा, औद कटै दिन सुरै नारे। मन गुरमल का इसवारे, रहाओ करो बेनंती। सुनो मेरे मीता, संत टहल की वेला। इहां खाड़ चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। एहो संसार बेकार सहसे मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पी आए हर रस, अकथ कथा तिन जानी। झांको आए सोई विहा जाओ, हर गुरते मने बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास ही सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी महला पंजवा, राख पिता प्रभ मेरे। मोहे निर

वर्ण ना साकों तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते भ्रम पौ काट किए नह केवल जब ते हम मैं मारी जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जेह प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवनरी जावे तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत भू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतित पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान त्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ अनक जन्म बजोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मान खुदेह पाई है देहो दर्स हर राया सोई होवा जो तिस पाणा या वरना किन्हीं कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला राख लेहो पिता प्रभ मेरे अनाथ कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कै पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाछे गौड़ी महला पंजवा हो ता कै बलिहारी जा कै केवल नाम आधारी रहाओ महिमा ता की केत गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज अनंत ना संग उन संसार अवर नाम दाते जगत उदारण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनके उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आसा ता कै चरण परो ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की ऋण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोबन आवाद जो दिस सब केश युग मैं काटिया नाम निदान सद नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मैं रविया निमख निमख नमस्कारा दिख्या गुर की मुंद्रा कानी दृढ़ो एक निरंकारा पंच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैराग ने आज्ञाकारी तब निर्मल योगी थिए परम जराए चराई विभूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भूता जो ठाकर मस्तक लेखिया जै पौ नाही तहा आसन बांधो सिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखे ओ जुगत नाम मन पानी ऐसा योगी वडभागी पेटै माया के बंधन काटै सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटै गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औखद जां को गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो ते तंते गुर शब्द दीपक प्रगासा भ्रम की जाली ताकी काटी जां को साध संगत विश्वासा तारी ले पवजल तारू बिखड़ा बोइथ साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा गुर पेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त्या गाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुकम मनाए गौड़ी महला पंजवा दया मया कर प्राण पत मोरे मोहया ना शरण प्रभ तोरी अंध कू मैं हाथ दे राखो कछु सियाण उक्त न मोरी रहाओ करन करावन सब किस तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गतमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मठो मथोरी
अपने सेवक संग तुम प्रवराते, ओत पोत भगतन संग जोरी, प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहै, जैसे दृष्टो चन चकोरी, राम संत मैं भेद किश नाही, एक जन कई मैं लाख करोरी, जा कह ही है प्रगट प्रभु होवा, आन दिन कीर्तन रस नर मोरी, तुम समराथिया पार अतूचे, सुखदाते प्रभ प्राणिया दोहरी, नानक कहो प्रभ की जय कृपा, उन संतन कै संग संगोरी, गौड़ी महला पंजवा, तुम हर सेती राते संतो, निभाए लेहो मोको पुरख विदाते, ओढ़ पहुंचा बो दाते रहाओ, तुमरा मर्म तुमाही जानिया, तुम पूर्ण पुरख विदाते, राखो सरना ना दीन को, करो हमारी गाते, तरन सागर बोध चरण तुम्हारे, तुम जानो अपनी पाते, कर कृपा जिस राखो संगे, ते पार पराते, ईत ऊत प्रभ तुम समर्था, सबके तुम रह हाथे, ऐसा निदान देहो मोको हर जनो, चले हमारे साथे, निर्गुणी आरे कहो गुण की जय, हर नाम मेरा मन जापे, संत प्रसाद नानक हर पेटे, मन तन शीतल त्रापे, गौड़ी महला पंजवा, गौड़ी महला पंजवा, सहि समायो देव, जाको सदगुर पय दयाल देव रहाओ, काट जेवरी कियो दासरो, संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचरज गुरै दिखायो, पयो प्रगास सर्प उजियारा, गुर ज्ञान मने प्रगटायो, अमृत नाम पियो मंत्र बतया, अन पै ठहरायो, मान आग्या सर्व सुख पाए, दुख ठाओ गवायो, जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकर, सब आनंद रूप दिखायो, ना किश आवत ना किश जावत, सब खेल कियो हर रायो, कहो नानक अगम अगम है ठाकर, भगत टेक हर नायो, गौड़ी महला पंजवा, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, मन ता की ओट गही जैरे, जिन तारे ब्रह मंड खंड हर, ताको नाम जपी जैरे रहाओ, मन की मत त्यागो हर जन, हुकम बूझ सुख पाई रे, जो प्रभ करे सोई पल मानो, सुख दुख ओही त्याई रे, कोट पतत उधारे खिन मैं, करते बार ना लागे रे, दीन दर दुख पंजन स्वामी, जिस पावे तिसे निवाजै रे, सबको मात पिता प्रतपालक, जी प्राण सुख सागर रे, देंदे तोट नाही तस करते, पूर रहे उरतनागर रे, जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी, कट कट अंतर सोई रे, नानक दास तांकी सरनाई, जाते बिरथा नाम कोई रे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर कबू न मनो बिसारे, इहां उहां सर्व सुख दाता, सगल कटा प्रतपारे रहाओ, महाकष्ट काटैखिन पीतर, रसना नाम चितारे, शीतल सांत सुख हर सरनी, जलती अग्नि निवारे, गर्भ कुंड नरक ते राखै, पव जल पार उतारे, चरण कमल आराधित मन में, जम की त्रास बेदारे, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर, ऊंचा अगम अपारे, गुण गावत त्यावत सुख सागर, जुवे जन्म ना हारे, काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो, निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजै, नानक सद बलिहारे, राग गौड़ी चेती महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म एहो रतन मोलक, साध संगत जप एक खिना रहाओ, सुत संपत बनता बिनोद, छोड़ गए बहु लोग पोग,
ਹੈ ਵਰਗੈਵਰ ਰਾਜ ਰੰਗ, ਤਿਆਗ ਚੱਲਿਓ ਹੈ ਮੂੜ ਨੰਗ, ਚੋਵਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਫੁੱਲਿਆ, ਸੋ ਤਨ ਧਰ ਸੰਗ ਰੂਲਿਆ, ਮੋਹੇ ਮੋਹਿਆ ਜਾਣੈ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਨ ਧਾਰ ਤਰਬੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨੋ, ਸਾਗਰ ਲਹਿਰ ਸੰਸਾ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰਬੋਇਥ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਨੋ ਰਹਾਓ। ਕਲ ਕਾਲਖ ਅੰਧਿਆਰੀਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੀਪਕ ਉਜਿਆਰੀਆ, ਬਿਖ ਬਿਖਿਆ ਬਸਰੀਅਤ ਕਨੀ, ਉਬਰੇ ਜਪ ਜਪ ਹਰ ਗੁਣੀ, ਮਤਵਾਰੋ ਮਾਇਆ ਸੋਇਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਰੰਪੋ ਖੋਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਏਕ ਤੇ ਆਇਆ, ਘਟ ਘਟ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੀਵਾਨ ਹਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਏਕ, ਸੇਵਾ ਥਾਰੀ ਗੁਰ ਹੈ ਟੇਕ, ਰਹਾਓ ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਚਾਕਰ ਲੈ ਲਾਇਆ, ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਲ ਸਾਧਿਆ, ਬਖਸੀਸ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਏਕ ਨਾਮ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬਿਸਰਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਾਕਰ ਸੇ ਭਲੇ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੀਆ ਰੇ ਓਲਾ ਨਾਮ ਕਾ, ਅਵਰ ਜੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਪਾਉ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ, ਰਹਾਓ ਅਵਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈਐ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਤਿਆਈਐ, ਲਾਖ ਹਿਕਮਤੀ ਜਾਨੀਐ, ਆਗੈ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀਐ, ਅਹੋ ਬੁੱਧ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਲੂ ਨੀਰ ਬਹਾਵਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੈ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਾਰ ਨੈ ਬਲਿਹਾਰ ਨੈ ਲੱਖ ਬਰੀਆ, ਨਾਮੋ ਹੋ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਪ੍ਰਾਣ ਅਦਰੀਆ, ਰਹਾਓ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੁਹੀ ਏਕ, ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਤੁਹੀ ਟੇਕ, ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਤਨੀ, ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਸਰਗੁਣੀ, ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਤੁਮ ਰੱਖੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕੋ ਲਖੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਤਕੀਆ ਤੂਹੀ ਤਾਣ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਆਰਾਧੀਐ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਪਰਮ ਹੋ ਪਉ ਸਾਧੀਐ, ਰਹਾਓ ਬੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਬਨੇ, ਸਭ ਊਚ ਬਰਾਇਤ ਜਨ ਸੁਨੇ, ਸਗਲ ਅਸਥਾਨ ਪੈ ਪੀਤ ਚੀਨ, ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਪੈ ਰਹਿਤ ਕੀਨ, ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਫਿਰੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਮਰੈ, ਬਲ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣ ਪਹੁ ਮੈਂ ਰਹੀ, ਹਰ ਸਾਧ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਗਹੀ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈਐ, ਨੀਤ ਨੀਤ ਹਰ ਸੇਵੀਐ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਰਹਾਓ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁਖ ਦਰਦਾ ਨੇਰਾ ਭ੍ਰਮ ਨਸੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਜਾਪੀਐ, ਸੋ ਜਨ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੀਐ, ਜਾਂ ਕਉ ਗੁਰ ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੇ, ਸੋ ਉਬਰਿਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਭ੍ਰਮਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮੰਤਨ ਵਾਸੈ ਨਾਮ ਹਰ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕ ਨਾਮ, ਈਹਾਂ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਘਨਾ, ਆਗੈ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਕਾਮ, ਰਹਾਓ ਕਟੀਐ ਤੇਰਾ ਅਹੰ ਰੋਗ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਰਾਜਯੋਗ, ਹਰ ਰਸ ਜਿਨ ਜਨ ਚਾਖਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਥੀਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਧ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਬੌਰ ਨ ਕਤ ਹੀ ਤਾਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋ ਗੁਰਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਪਉ ਗਿਆ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਤਾਹੂ ਕੋ ਪੀਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹਰ ਰਵੈ, ਸੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਰਹਾਓ ਜਾਂ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਬੁੱਧ, ਤਾਂ ਕੈ ਕਰ ਤਲ ਨਵ ਨਿਧ ਸਿੱਧ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤਨੀ, ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਕੈ ਕਮੀ, ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਨਿਆ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਹਰ ਤਨ ਜਾਂ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸੰਗ ਦੁਖ ਨਸੈ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਰਭ ਬੜੋ ਮੂਲ ਇਤਨੋ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਗਹੁ ਕਿਤਨੋ, ਰਹਾਓ
ਬੇਵਰਜਿਤ ਬੇਦ ਸੰਤਨਾ ਉਵਾਹੂ ਸਿਉਂ ਰੇਹ ਤਿਨੋ ਹਾਰ ਜੁਆਰ ਜੁਆ ਬਿਦੇ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਲੈ ਜਿਤਨੋ ਹਰਨ ਪਰਨ ਸੰਪੂਰਨਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੰਗ ਰਿਤਨੋ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਮੈਂ ਦਿਤਨੋ।

ओही पाठी ओही पोचा, ओही प्यारो ओही रुचा, मन ओहो सुख जातो, सहज खेलो अनद खेलो, रहे फेर पय मेलो, नानक गुर शब्द परातो, राग गौड़ी मालवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर नाम ले हो मीता ले हो, आगे बिखम पंथ पयान रहाओ, सेवत सेवत सदा सेव, तेरा संग बस्त है काल, कर सेवा तू साधकी, हो कटिए जमजाल, होम जग तीर्थ किए, बिचहु मैं बदे बेकार, नरक सुर्ग दोए पुंचना, होए बहुर बहुर अवतार, शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी, निचल को थाओ नाहे, बिन हर सेवा सुख नहीं, हो साक्त आवे जाहे, जैसो गुर उपदेसया, मैं तैसो कहया पुकार, नानक कह सुन रे मना, कर कीर्तन होए उदार, राग गौड़ी माला महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुख रे, हरख सोग हान मृत, दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ, जाओ लो हाँ के सोचो चितवाओ, तौ लो दुखन परे, जाओ कृपाल गुर पूरा भेटिया, तौ आनंद सहजे, जेती सियानप कर्म हों किए, तेते बंद परे, जौ साधु कर मस्तक धरयो, तब हम मुक्त पए, जौ लो मेरो मेरो कर तो, तौ लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कहो, तब हम सहज सोए।

क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो, संता दासी सेवा चरणी जियो। एहो जियो बताई बल बल जाई जियो, तिस निम निम लागौ पाई जियो। पोथी पंडित बेद खो जनता जियो, होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो। गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपौ नाम ते आई जियो। पए कृपाल स्वामी मेरे जियो, पतत पवित लग गुर के पैरे जियो। भ्रम पौ काड़ किए निरवैरे जियो, गुरमन की आस पुराई जियो। जिन नाव पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो। जिस साधु संगत ते सब सुकरणी जियो, जन नानक सहि समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो। रहन दिन सो साथ साथ चितारे जियो, संत देव संदेसा पै चरणारे जियो। तुद बिन कित बिन तरिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो। वन त्रिण त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो। पेख दर्शन ओ सुख लइए जियो, चरण पखार करी ने सेवा जियो। पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो। बिनो ठाकर पै कहिए जियो, इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो। दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो। एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा। सुन सुन साजन मन में

एक बिन सै एक अस्थर मन अचरज लखियो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यों सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै ज्यों बादर की शाई। जन नानक जग जान्यो मिथया रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नामा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे अहनिस मगन रह।

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फोन, भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त।

वेद पुराण साध मग सुन करो, निमख ना हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की, वृथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बानो, तासो रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभु, तासो नेहु ना लावे, नानक मुक्ता ही तुम मानो, जेकट राम समावे। गौड़ी महला नावा, साधो राम शरण बिश्रामा, वेद पुराण पढ़े को एहो गुण, सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन, औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जेह नहन, सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब, त्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कै, लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नहन, तेह तुम जानो ज्ञानी। नानक मुगता है तुम मानो, एह बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा, मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औध कटै नहीं जान, पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी। इन मैं कछ तेरो रे नाहन, देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो, गोविंद गत नहीं जानी। निमख ना लीन पयो चरणन स्यो, बिरथा औध सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे। और सगल जग माया मोहया, निरपै पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा, नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन, शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही है मोह धर रे। पावन नाम जगत मैं हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावे, कशु उपाओ मूत का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं, पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला, गौड़ी गुआरेरी। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद। निद सद निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहा बिखमार। त्रिकुटी छूटी बिमल बजार, गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया, सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया। लाल पय सूहा रंग माया।

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन, शब्द पछाने तिन्ने पौन। जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया। कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। उस्त करह केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरेरी महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहुचित विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्ध रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार, हरक सोक उबे दरबार। सुख सहजे जपरदै मुरार, नदर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नामे सब दुख निवास, मनमुख मूड माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावै, साचे सूचे मैल न पावै, नानक हर गुण गावै। गौड़ी गुआरेरी महला पहला, हौ मैं करत्या नै सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बगूते पावै दोए, सो कमावै तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगै नाम बिसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए, गुरमुख दिसै सह सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत दो

तृष्णा यगनो शब्द बुझाए, दूजा परम सहि सुभाए, गुरमति नावरदै वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तन मैं साचो।

कथनी कथो ना आवे और गुरपुछ देखिया नाही दर होर दुख सुख पाने तसैर जाए नानक नीच कह लिवलाए गौड़ी महला पहला दूजी।

काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरणगत गर्भ निवारे आप तारे पितरी निस्तारे सतगुर सेवे सो जोगी होए पैरच रह सो निरप होए जैसा सेवै तैसो होए नर नह केवल निरपौ नाम अनाथ है नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप पछाणे साचै शब्द उदर निशाणे शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै ना जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसै सो आस निरासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अड़सठ मज्जन चरणै धूरी रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा जेवा सूची हर सारा सच करनी अवे अंतर सेवा मंत्र तासिया अलाखा पेवा जै जै देखो तै तै साचा बिन बूझे झगड़त जग काचा गुरसम जावै सोजी होई गुरमुख विरला बूझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु पहे बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस को देख करो अनपूजा संत हेत प्रवतर पवन धारे आत्म चीने सो तत् बिचारे साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हम ताके दास गौड़ी महला पहला ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया वेद की बिपत पड़ी पछतानिया जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार रहाओ बल राजा माया अहंकारी जगन करे बो पार अफारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवै बिन गुरे अंत ना पाए अपेवै आप भुलाए आपे मत देवै दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी प्रभ नारायण गर्व प्रहारी प्रहलाद उधारे कृपा धारी।

हर नाग चले नखो बिदासा, दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमन संघारे, रक्त बीज काल ने बिदारे, दैत संघार संत निस्तारे, आपे सतगुर शब्द विचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साच भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पत खोई, राम ना जानिया करता सोई, जन को दुख पचै दुख होई, जन में जय गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावे परम भुलानिया, एक तिल भूले बहुर पछतानिया, कंस केस झांडूर ना कोई, राम ना चीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए, नानक नाम मिलै गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हंडावो, बिन हर नाम कहां सुख पावो, क्या पहरा

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करै अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी।

वाद अहंकार नाही प्रमेला, मन दे पावै नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोए थो सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट।

नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला। प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजै सो काल संघारिया। हम हर राखे

सुल्तान खान बादशाह नैरना, नामो भूले जमका दुख सहना, मैं तर नाम ज्यों राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, साह मरे संचय माया दाम, मैं तन दीजे हरि अमृत नाम। रैयत मेहर मुकदम सिकदार, निश्चल कोय ना दिसे संसार, अफर्यो काल कूड सिर मारे। निश्चल एक सच्चा सज सोई, जिन कर साजी तने सब गोई, ओ गुरमुख जापै ता पत होई। काजी सेख पेख फकीरा, वड्डे कहावे हो मैं तन पीरा, काल ना छोड़े।

गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी महला पहला, बोले साच मिथ्या नहीं राई। चाले गुरमुख हुक्म रजाई, रह अतीत सच्चे सरनाई। सच कर बैसै काल ना जो है, मनमुख कौ आवत जावत दुख मोह। रहाओ अपियो पियो अकथ कथ, अकथ कथ रही है। निज कर बैसो सहज कर लही है, हर रस माते ओ सुख कही है। गुरमत चालो निचल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले। पीवे अमृत तत् विरोले, सतगुर दीखिया दीख्या लीनी। मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी। भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच ज्योति अपार। जय देखो तह एक ओंकार, रह निरालम एका सच करनी। परम पद पाया सेवा गुरचरणी, मन ते मन मानिया चूकी अहम ब्राह्मणी। इन बिद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया। प्रभ पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलख लखाया। निहचल महल नहीं छाया माया, सासन दुखे परम चुकाया। जिनकै मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई। नानक साच नाम मल खोई, गौड़ी महला पहला। राम नाम

आए गुरमुख नाम वसै मन आए गुरमुख कर्म धर्म सच सोई गुरमुख अहंकार जलाए दोई गुरमुख नाम रते सुख होई अपना मन पर बोधो बूझो सोई लोग समझावो सुने ना कोई गुरमुख समझो सदा सुख होई मनमुख डंफ बहुत चतराई जो किश कमावै सो थाए ना पाई आवे जावे ठौर ना काई मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना बग ज्यो लाए बह नित्याना जम पकड़िया तब ही पछताना बिन सतगुरु सेवे मुक्त ना होई गुर प्रसादी मिले हर सोई गुरदाता जुग चारे होई गुरमुख जात पात नामे वड़ियाई सायर की पुत्री बिदार गवाई नानक बिन नामे झूठी चतराई गौड़ी महला तीजा इस जोका धर्म पढ़ो तुम पाई पूरे गुर सब सो जी पाई एथे अगे हर नाम सिखाई राम पढ़ो मन करो बिचार गुर प्रसादी मैं लियो तार रहाओ वाद विरोध ना पाया जाए मन तन फीका दूजे पाए गुर कै शब्द सच लिवलाए हाँ मैं मैला एहो संसारा नित तीर्थ नावे ना जाए हंकारा बिन गुर पेटे जम करे खुवारा सोजन साचा जे हों मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नट बाजी पाई मनमुख अंध रहे लपटाई गुरमुख लिबत रहे लिवलाई बहुते पेख करे पेख तारी अंतर तिसना फिरे हंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतराई माया

हर कथा सुने से तनवंत दिसै जुग माही तिनको सब निवै अंदन पूज कराही सहजे गुण रवै साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रैगुण मेटे चौथे चित लाया नानक हमें मार ब्रह्म मिलाया गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद बखाने अंतर तामस आप ना पछाण ता प्रभ पाए गुर शब्द बखाने गुर सेवा करो फिर काल ना खाए मन मुख खादे दूजे पाए रहाओ गुरमुख प्राणी अपराधी सी दे गुर कै शब्द अंतर सहजरी दे मेरा प्रभ पाया।

मन कर हला मेरे प्रीतमा, दिन रहन हर लिवलाए, घर जाए पावै रंग महली, गुर मेले हर मेलाए। मन कर हला तू मीत मेरा, पाखंड लोभ तजाए, पाखंड लोभी मारी जम डंड दे सजाए। मन कर हला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए, हर अमृत सर गुरपूरिया, मिल संगती मल लै जाए। मन कर हला मेरे प्यारिया, एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया, अंत साथ ना कोई जाए। मन कर हला मेरे सजना, हर खर्च लिया पत पाए, हर दरगह पहनाया, हर आब लया गल।

बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुरु गोविंद समाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख पाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल मन करहला मेरे प्यारिया सत्संग सतगुर पाल सत्संगत लग हर त्याई है हर हर चल तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नजर निहाल आप छडाए छुट्टिया सतगुर चरण समाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल गुर नानक नाम विखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया जम मारियाड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम पवै बाहर पाल गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल हर रंग कदे न उतरै गुर सेवा शब्द समाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरखिया काल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद जब एह मन मैं करत गुमाना तब यो बावर फिरत बेगाना जब एह हुआ सगल कीरी ना ता तेर मैया कटकट जीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किस को एह जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाई ता ते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हर पिछाता तब इसनो नाही किस्ताता जब इन अपनो बांध्यो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किश कर्मा ने पेदा तब ते दुख डंड अरखेदा जब इन एको एकी बुझिया तब ते इसनो सबके सूझिया जब एह तावै माया अर्थी न तृप्तावै न तसलाथी जब इसते एहोयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी करन करावन सब किश एक है आपे बुद्ध विचार बबेक है दूर ना नेरे सब कै संगा सा सालाहन नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुरसेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा तिसके हृदय रविया सोए मन तन सीतन निचल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाओ जास जपत पौ अपदा जाए तावत मनुआ आवै ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत हम मैं पागे जास जपत वसिया वै पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत एह तृष्णा बुझै जास जपत हर दरगह सजै जास जपत कोट मिटै अपराध जास जपत हर होवै साध जास जपत मन शीतल होवै जास जपत मल सगली खोवै जास जपत रतन हर मिलै भवन न छोड़ै हर संग हिलै जास जपत कई बैकुंठ वास जास जप सो सहज निवास जास जपते अग्न पोहत जास जपते काल ना जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जप सगला धुलाता जास जपत मुश्किल कछु ना बने जास जप सुन अनहत तुने जास जपते निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर सुख दृष्ट सब ऊपर करी जिसके हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा कहो नानक जे सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा
ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਧਾਰੈ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰੈ, ਦਸ ਇੰਦਰੀ ਕਰ ਰੱਖੈ ਵਾਸ, ਤਾਂ ਕੈ ਆਤਮੈ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤਾਂ ਕੈ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਉ ਦਇਆ ਮਇਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਰਹਾਓ। ਸਾਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਕੈ ਇਕ ਸਮਾਨੈ, ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨੈ,

ही जपना। सहजे भोजन सहजे भाओ, सहजे मिट्यो सगल दुराओ। सहजे होवा साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्म निसंग। सहजे गृह में सहजो दासी, सहजे दुबदा तन की नासी। जा कै सहज मन भया आनंद, ता कौ भेटिया परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मैं आत्म रसिया, ता कै संग अबनासी बसिया। सहजे आसन आसर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया। सहजे रोण चुनकार सुहाया, ता कै कार पार ब्रह्म समाया। सहजे जाको पर्यो कर्मा, सहजे गुर पेट्यो सही धर्मा। जा कै सहज भया सो जाने, नानक दास ता कै कुर्बान। गौड़ी महला पंजवा, प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया। पुत्र कलात्र कुटुंब संग जुरिया। भोजन अनक प्रकार बहु कपरे, सर पर गमन करेंगे बपरे। कवन स्थान जो कबो न टर, कवन शब्द जे दुर्मत हर रहाओ। इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नीचल नहीं रहना। शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिरस बिताला। गिरतर

तीर्थ देव देहो रा पोथी, माला तिलक सोच पाक होती, धोती डंडौत पर साधन भोगा, गवन करै गो सगलो लोगा, जात वर्ण तुर कर हिंदू, पस पंखी अनक जोन जिंदू, सगल पसार दी सह पासारा, बिनस जाए गो सगल आकारा, सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना, सदा आनंद निश्चर सजथाना, तहां संगत साध गुण रसै, अनपौ नगर तहां सदवसै, तह पौ भरमा सोग न चिंता, आवण जावण मृत न होता, तै सदा आनंद अनहत आखारे, भगत वसै कीर्तन आधारे, पार ब्रह्म का अंत ना पार, कौन करै ता का विचार, कहो नानक जिस कृपा करै, निश्चल थान साध संगत रै, गौड़ी महला पंजवा, जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तसै वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई, ऐसा कोय जो दुबदा मार गवावै, इसे मार राजो कमावै, रहाओ जो इस मारे तिसको पौ नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै, जो इस मारे सो दरगह सजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जदी, जो इस मारे तिस होवै गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो निचल तनी, जो इस मारे सो वट भागा, जो इस मारे सो वंदन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सोई सुगयानी, जो इस मारे सो सही ध्यानी, इस मारी बिन थाए ना परै, कोट कर्म जाप तप करै, इस मारी बिन जन्म ना मिटै, इस मारी बिन जमते नहीं छुटै, इस मारी बिन ज्ञान ना होई, इस मारी बिन जूठन धोई, इस मारी बिन सब किश मैला, इस मारी बिन सब किश जौला, जां कौ पए किरपाल किरपा निध, तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध, गुर दुबदा जां की है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी, गौड़ी महला पंजवा, हर स्यों जुरै ता सब को मीत, हर स्यों जुरै ता निचल चीत, हर स्यों जुरै ना व्यापै काड़ा, हर स्यों जुरै ता होए निस्तारा, रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारे नाही होर, रहाओ वड़े वड़े जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार, हर का दास नीच कुल सुनै, तिसकै संखिन मैं उदरै, कोट मज्जन जा कह सुन नाम, कोट पूजा जा कह ध्यान, कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी, मन अपने मैं फिर चेत, बिनस जाए माया के हेत, तो हर अबनासी तुमरे संग, मन मेरे रच राम कह रंग, जा कह काम उतरै सब भूख, जा कह कामना जो है दूत, जा कह काम तेरा वड गमर, जा कह काम होवै तू अमर, जा के चाकर कौ नहीं डान, जा के चाकर कौ नहीं बान, जा कह दफ्तर पुछै ना लेखा, ताकि चाकरी करो बसेखा, जा कह उन नाही काहू बात, एक आपा ने कह पात, जा की दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर नाही को मूड़ा, ना को हीण नाही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जस भागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर प्यार जारी, त्यों जीवै साक्त नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मैं जिया, कोट दिन सलाख सदा थिरथिया, रहाओ बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिष्टा मैं वास, बिन सिमरन पय कूकर काम, सागत बेसवा पूतन नाम, बिन सिमरन जैसे सींग शतारा, बोले कूर सागत मुखकारा,
ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਗਰਦਭ ਕੀ ਨਿਆਹੀ ਸਾਕਤ ਥਾਨ ਪ੍ਰਹਿਟ ਫਿਰਾਹੀ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਜਿਸ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਗਤ ਰਾਇਆ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੋਹੇ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ ਗੁਰਮੂ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਧਿਆਇਓ ਮੋਹੇ ਨਾਉ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹ ਮਿਲਿਆ ਥਾਓ ਰਾਓ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪ ਗੁਰ ਕੀ ਦਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪੇਖਿਓ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕੀਨੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਿਆ ਸਭ ਲੋਗ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ਨਿਧ ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕੱਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿਮਰਾਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਗੁਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣ ਨਿਤ ਮੱਜਨ ਕਰੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲਹਰਾਓ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਚੂਲਾ ਵੋ ਪਾਖਾ ਮਹਾਂਯਗਨ ਤੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਢੋਵੋ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਅਕਲ ਗਤ ਜਾਣੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ

सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग। पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्वस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया, सेई होए भगत जिन्ना किरपारिया। हो वारिया हर वारिया रहाओ, सुन सुन पंथ डराओ बहुत पैहारिया। मैं तकी ओढ़ संताहा लिहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निवनु लागौ पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किसी ही ना है हर पूर भंडारिया। चाहो दिस जपिए नाओ सुख सवारिया। मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कु पारिया। मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्व निधान अकथ कथारिया। हर दरगह सोभावंत बहाल उडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोल्या पारिया। गुर सेवा पौजल तरिय कहो पुकारिया।

भाई मीत बंद पसखे पाचे तिन्हू कौ संपानी जित लागो मन बसना अंत साई प्रगटानी अहम बुद्ध सोच कर्म कर ए बंधन बंधानी दयाल पुरख कृपा करो नानक दा दसानी जुमला एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद रा गौड़ी पूर्वी संत महला पहला मुंद रहन दुहेलड़िया जियो नींद ना आवै सा तन दुबलिया जियो पिर कह हावै तन थी दुबल कंत हावै केव नैनी देखै सिंगार मिठरस भोग भोजन सब चूटक तैना लेखै मैं मत जोबन गर्भ गाली दुदा थनी ना आवै नानक सातन मिलै मिलाई बिन पर नींद ना आवै मुंद निमानड़िया जियो बिन तनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उरतारे नाहा बिन कर वास नाही पुछो सखी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसै सा सुहेलिया सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमति सह जानिया नानक नाम ना छोड़ै सा तानो नाम सहि सुमानिया मिल सखी सहेलड़ी हो हम पिर रावेहा गुर पिछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछताणिया निस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच कीमत सदा नौतन शब्द नहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेलियो मेरी इछ पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रैसी मुंद मन यो माहो साजन रहंसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करै बिनती रैन दिन रस पिनिया नानक पिरतन करै रलिया इच्छ मेरी पुनिया गौड़ी संत महला पहला सुन नहा प्रभु जियो एकलड़ी बनमा है क्यों तीरैगी ना बिना प्रवे प्रवाहे तन ना बाजो रह ना साकै बिखम रैन कनेरिया नह नींद आवै प्रेम भावै सुन बेनंती मेरी आ बाजो प्यारे कोई ना सारे एकलड़ी कुर लाए नानक सातन मिलै मिलाई बिन प्रीतम दुख पाए पिर छोड़ी आड़ी जियो कमण मिलावै रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावै शब्दे सुहावै ता पत पावै दीपक देह उजारै सुन सखी सहेली सा सुहेली साचे के गुण सारै सतगुर मेली ता प्रदावी बिकसी अमृत बाणी नानक सातन ता प्रदावे जा तस्कै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुठी कूड़ियारे क्यों खूलै गल जे वड़ा जियो बिन गुर अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै पुन दान्या नेक नावन क्यों अंतर मल धोवै नाम बिना गत कोई न पावै हठ निग्रह बेबाणै नानक सच कर शब्द सियापै दुबदा महल के जाणै तेरा नाम सच्चा जियो सब सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वा पारो नाम कावा पार मीठा भगत लाहा अन दिनो तिस बाज वखर कोई ना सूजै नाम लेवो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरै पाया नानक नाम महारस मीठा गुरपूरै सच पाया राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद सा तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह ना सकै जियो बिन हर प्यारे रह ना सकै गुरबिन मैल ना पाईऐ जो गुर कहे सोई पर कीजै तिसना यगन बुझाईऐ हर साचा सोई तिस बने अवर ना कोई बिन सेवै सुख ना।

पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, पिर बिन नींद ना आवै जियो, कापड़ तन ना सुहाई, कापड़ तन सुहावै जा पिर भावै गुरमती चित लाइयै, सदा सुहागण जा सतगुर सेवे गुर कै अंक समाई है, गुर शब्दे मेला ता पिर रावी लाहा नाम संसारे, नानक कामण नहा प्यारी जा हर के गुण सारे, सात हन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हम मैं मारे इन बद मिलो प्यारे, सातन सोहागण सदा रंग राती साचै नाम प्यारे, अपने गुरमिल रही है अमृत गही है दुबदा मारन वारे, नानक कामण हर वर पाया सगले दुख विसारे,

पानी अन्न ना पावे मरिए हावे, बिन पर क्यों सुख पाई है। गुर आग्या करो बिनंती जे गुर पावे, जो मिले तवें मिलाई है। आपे मिल लए सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागणो ना पर मर न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोहे लिया जियो। दुबदा सह सुमाए दुबदा सह सुमाए, कामन वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कुड़ एह एक शरीर कूड़क सत भरिया, गलत आई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामन पर पाया जियो गुर कै पाए प्यारे। रैन सुख सुती जियो अंतर उर तारे, अंतर उर तारे मिलिए प्यारे। आन दिन दुख निवारे अंतर महल पर रावे, कामन गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सोहा।

राम नाम वा पाराग म्या पारा गुरमती तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो जो जुग भगत प्यारे। जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे, आपे भगती लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण गाता गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए।

शंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हरमादो ध्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कमल आरा दी है जम पंथ विखड़ा अगन सागर निमख सिमरत साधी है कल मलै देता शुद्ध करता दिन सरहण आरा दो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दा मोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वछल बिरदाया भगत वछल पुरख पूर्ण मनिया चिंदिया पाईऐ तम अंध कूप ते उधारै नाम मन वसाईऐ सुर सिद्ध गण गंधर मुन जन गुण अनक भक्ति गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन धारी करना मैं समर्थ स्वामी घटघट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम्य पारो सरण जोग समर्थ मोहन सर्व दुख बिदारो रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समर्थ सब कल तारी गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला विश्वंपर देवन को एकै सर्व करै प्रतपाला प्रतपाल महा दयाल दाना दया तारे सब किस काल कंटक लो मोह नासै जी जाके प्रभसै सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी जब दीन दयाला गौड़ी महला पंजवां सुन सखिए मन उद्म करेहा मनाए लै हर कंता मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह साधु मंत सखी वस आया फिर छोट ना जाई एह रीत भली भगवंत नानक जरा मरण पै नरक निवारै पुनीत करै तिस जंत सुन सखिए एह पली बिनंती एहो मतांत पकाईऐ सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाईऐ काल कलेस मिटै भ्रम नासै मन चिंधिया फल पाईऐ पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आईऐ सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रम मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समर्थ पुरख में लाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवट पागी माए सखी नाल वसां अपने नहां प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया प्रम खोयो सांत सहे स्वामी प्रगास भया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सोहाग ना टलिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बाम नखरी महला पंजवा सलोक गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंधप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरदेव मंत निरोधरा गुरदेव सांत सतबुद गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जुग जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर
गुरुदेव नानक हर नमस्कार। सलोक आपै किया कराया आपै करना जोग, नानक एको रव रया दूसर होआ ना होग। पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं। आपै सुनो आपै सुख आसनो, आपै सुनो तो आप ही जासनो। आपने आप आपै उपायो, आपै बाप आप ही मायो। आपै सूखम आपै अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। रहाओ सलोक निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण।

ओवं गुरमुखियो अकारा एक सुत परो बनहारा भिन्न भिन्न त्रै गुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं सगल भांत कर करै उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू भांते आप निरारा नानक अंत ना पारा वारा सलोक सेई साह भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सतपुरख ते पिन ना को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसै परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहूं को जापत सो साध

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तंते ऊजह रुच या मनुआ तन नहीं बांछै सुरग ना आछै अत प्रे प्रीत साध रज राचै तंदे कहां ब्यापै ताहूं जो एक छाड़ियन कतै न जाहूं जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भगत ज्ञानी सोए पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुन तो कह जोग ना हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट मैं बिन बूझे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग मैं एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत उत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जेहे मन सोए पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताके निकट ना माए सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रव्याप पासे अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो सो पायो जो आप देवायो उवा का अंतना जाने को जो जो करै सूफन हो एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिख सोर नानक तेह सरनी परो बिनस जाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतु न छूटी है सकते उकमाहे हाँ हाँ करते कर मरत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तऊ एव कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे ने बुझै सो प्रभ सधू संग लेखै गणतना छूटी है काची पीतना शुद्ध

लगना नानक ठाकर सदा अलिपना श्लोक। लाल गोपाल गोबिंद प्रभ गहर गंभीर अथाह

होवनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिया, जास रसनो हर हर जस भनिया। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैं राता, जां को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो ना आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सो, एक नाम ले मने प्रो। यैया जन्म नहारी है, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूरा उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरो तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिखिया दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंठ चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी

दिन दे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा, मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं काहू कौ मीता, माया मोह बंद प्रभ कीता, दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते दे गुरमुख त्रापे, सलोक धर जिया रे इक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, तद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मन प्रगास, तन साचा तेउ सच सहा, हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनिया, हर हर नाम श्रवण जे सुनिया, गुरमुख जेह कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई, सलोक नानक नाम नाम जप जपया, अंतर बाहर रंग गुरपूरै उपदेसिया, नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक भरै ते नाही, जाकै मन तन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते, बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जाको, निद निदान हर अमृत पूरे, तै बाजे नानक अनहद तूरे, सलोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधी है अंत ना पारा वार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया, पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पज त्रोह मोह मिट नाई, जाको राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सो, नानक दूसरे अवर ना को, सलोक फाहे काटे मिटे गवन, फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई, फिरन मिटे नित नीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया, दुर्लभ देहे कल जुग मैं पाया, फिर या ओसर चरै नहाथा, नाम जपो तो कटिये फासा, फिर आमन जान ना होई, एक एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे, मिल रहो नानक बेचारे, सलोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस।

रहत रहत रह जाय बेकारा, गुरपुर के शब्द अपारा, राते रंग नाम रस माते, नानक हर गुर की नींदा ते। श्लोक लालच झूठ बिखै ब्याद, या देही मैं बास, हर हर अमृत गुरमुख पिया, नानक सुख निवास। पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू, दुख दर्द ते मिटै खनाहू, नाम औखद जिरदै हतावै, ताहे रोग सुपने नहीं आवै। हर औखद सब कट है भाई, गुरपुरे बिन बिदना बनाई, गुरपुरै संयम कर दिया, नानक तो फिर दुख ना थिया। श्लोक वासदेव सर्वत्र मैं, ऊनक तू ठाए, अंतर बाहर संग है, नानक काए दुराए। पौड़ी ववा वैर न करिए काहू, घटकटे अंतर ब्रह्म समाहू, वासदेव जल थल मैं रविया, गुरप्रसाद विरले ही गविया। वैर विरोध मिटे ते मन ते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिहन सगले ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हां हां करत बिहानिया, साकत मुकदया जान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत, नानक किरत कमान। पौड़ी राड़ा राड़ मिटा संग साधु, कर्म धर्म ते कर्म धर्म तत नाम आराधु, रूडो जे बस्यो रिद माही, ओवा की लाड़ मिटत बिन साही, अड़ाड़ करत सगत गावारा, जे ही है अंबुद बिकारा, अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई, निमुख माहे नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट कहो, उक्त सियान पत्याग, गुर दीख्या जे मन बसै, नानक मस्तक भाग। पौड़ी ससा सरन परे अवहारे, शास्त्र सिमरत बेद पुकारे, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सा सा संपूल नहारे, तुम समराथ्या गंता पारे, सरन परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। श्लोक खुदी मिटी तब सुख पए, मंतन पए अरोग, नानक दृष्टि आया उस्त करने जोग। पौड़ी खखा खरा सरा होताहू, जो खिनमै उन्ने सुपर पराहू, खरा निमाना होत परानी, अंदर जापै प्रभ निर्बानी, भावै खसम ता उवा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसोवा गणता। असंख खते खिन बख्शन हारा, नानक साहिब सदा दयारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे, सरन परो हर राय, उकत स्यानप सगल त्याग, नानक ले सुमाए। पौड़ी ससा स्यानप छाड़ एयाना, हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना, सहस पात करै चतराई, संग तुहारै एक न जाई, सौ सौ जप दिन राती, रे जी चलै तुहारै साथी, साध सेवा लावै जे आपै, नानक ताको दुख ना व्यापै। सरो श्लोक हर हर मुख ते बोलना, मन बूठै सुख होए, नानक सब मैं रव रया, थान थनंतर सोए। पौड़ी हेरो कटकट सगल कै, पुर रहे भगवान, होवते आए सद सदीव, दुख भंजन गुर ज्ञान, हाँ छुटकै होए आनंद तेह, हाँ नाही तह आप, हते दुख जन्मै मरण, संत संग प्रताप, हित कर नाम दृढ़ दयाला, संतै संग होत कृपाला, ओरे कछु न किन्हू किया, नानक सब किछ प्राप्त हुआ। श्लोक लेखै कतै न छूटिया, खिन खिन पूलन हार, बख्शन हार बख्श लै, नानक पार उतार। पौड़ी लून हरामी गुनहगार, बेगाना अल्प मत, जियो पिंड जन सुख दिए, ताहे न जानत तत, लाहा माया कारण, दे दे टुंडन जाए, देवन हार दा तार प्रभ, निमखना मने बसाए, लालच झूठ बेकार मोह, या संपै मन माहे, लंपड़ चोर निंदक महा, तिन्हू संग बिहाए, तुद पावै ता बख्श लै, खोटे संग खरे, नानक पावै पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। श्लोक खात पीत खेलत हस्त, भरमे जन्म अनेक, भवजल ते काढ़ो प्रभु, नानक तेरी टेक। पौड़ी
खेलत खेलते आयो अनक जोन दुख पाए खेद मिटे साधु मिलतो सतगुर बचन समाए खिमा गही सत संचयो खायो अमृत नाम खरी कृपा ठाकर पही अनंत सुख विश्राम खेब निबाही बहुत लाभ घरे आए पतवंत खरा दिलासा गुरदिया आए मिले भगवंत आपन किया करे आप आगे पाछे आप नानक सो सराही है जे कटकट रहा ब्याप सलोक आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल पौड़ी अखर मैं तेर भवन प्रभ तारे अखर कर कर वेद विचारे अखर शास्त्र सिमरत पुराना अखर नाद कथन वखियाना अखर मुक्त जुगत पै भरमा अखर कर्म किरत सुच धर्मा दृष्टमान अखर है जेता नानक पा ब्रह्म निरलेपा सलोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती उस्तत कहन ना जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बले।

हैपी हो वनहार, हे संतें कै सदा संग निधाराय आधार। हे ठाकर हौ दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दीजे नाम दान राखो ही है परोए। सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरुदरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लगतरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। एहो श्लोक आद अंत पढ़ना। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां। श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै, अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरो जास विषम पर एक नाम जपत अगणत अनेक, वेद पुराण सिमरत सुध अखर कीने राम नाम एक अखर, किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवै, कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ, प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै प्रभ कै सिमरन अंदर जागै, प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सफल फला, से सिमरै जिने आप सिमराए नानक तां कै लागो उपाए, प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सबके सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद महे समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन।

दसन दसना प्रभ को सिमरै से धनवंत, प्रभ को सिमरै से पतवंत, प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभ को सिमरै से पर उपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे, संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कौ ना चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहि समानी, प्रभ कै सिमरन निःचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार, सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जह मात पिता सुपमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जय महापयान दूत जमदल, तै केवल नाम संग तेरे चल, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंद ना परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत अगावै, जेह मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जब तै पार पराही, अनक बिगन जाय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै, अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम, हौं मैला मल कबो न धोवै, हर का नाम कोट पाप होवै, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाईऐ साध कै संग, जेह मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा, जेह पैंडै महांद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा को ना सिंहानू,

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग

हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मद्दे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास्त पीसर थीवे। अगन माहे होमत पुराण, कनक अश्व है वर भूम दान। न्यौली कर्म करे बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावे, तौपी हो मैं मैल न जावे। हर के नाम समसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटे, गर्भ गुमान न मन ते हुटे। सोच करे दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कभू ना बिखिया टरे। जल धोवे बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही उपयाल, मोहे व्यापै माया जाल। अवर कर तूत सगली जमडानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए मैं शोरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताक बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कटकट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सिठ साजना।
सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा।

जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जा की टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो पूल नहार नानक राखन हारिया पार रतन त्याग कौडी संग्रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन ले प्यो तारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कु मैं पतत बिकराल नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्स नाहे कश करै।

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याए सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसै त्याग कत अवर लोभावे जे प्रसाद सुख से सुईजै मन आठ पहर ताका जस गावीजै जे प्रसाद तुझ सब को मानै मुखता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म।

रखै। जेह प्रसाद करै पुन बहु दान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जेह प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को साह साह चितारी। जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमर उसदा अनूप। जेह प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जेह प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह है। जे प्रसाद सुनै करन नाद, जे प्रसाद पेखै बिस्माद। जेह प्रसाद बोलै अमृत रसना, जेह प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चलै, जे प्रसाद संपूर्ण फलै। जे प्रसाद परमगत पावै, जे प्रसाद सुख सहज समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ, गुर प्रसाद नानक मन जागौ। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु ना किन्हू लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनकै कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उजल होत, साध संग मर सगली खोत। साध कै संग मिटै अवमान, साध कै संग प्रगटै सुगयान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ महे सुमानी। साध कै संग गोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहु तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर, साध कै संग ना बींगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौ ताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बसता गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थानी उच्चै, साधु कै संग मैल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ै सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै। साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कशकाल, दर्शन भेट तो होत निहाल। साध कै संग कलुख तहरै, साध कै संग नरक पर हरै।
साध कै संग इहां उहां सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्र मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नाहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे महल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का उसका आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सच जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक। और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान।
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸੋ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਪਰਤਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰਹਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ, ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ, ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਚੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ,

पसरो आप होए अंत तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब काब विचार है। कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते का अंत ना पावे। कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपेगे आत्म निकोर। कई कोट पर दर्ब कौ हिरै, कई कोट पर दुख ना करै। कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश पर माहे। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रसपोगी। कई कोट पंखी सर्पयो पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए। कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देवदानव इंद्र सिर शतर। सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त। कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे। कई कोट जख किन्नर प्रसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच। सब ते नेरे सब हूं ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया परपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी। कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बौजोनी फिरै। कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे। कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मै चिंत। जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगतिन लवलागी। कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिल्यो प्रभ विनाश। कई कोट मांग ऐसा संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनका होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन। कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड। कई कोट होए अवतार, कई जूत कीनो विस्तार। कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एकंकार। कई कोट कीने

प्रभ भावै मानुख गत पावै, प्रभ भावै ता पाथर त्रावै, प्रभ भावै बिन सास ते राखै, प्रभ भावै ता हर गुण पाखै, प्रभ भावै ता पत तो धारै, आप करै आपन विचारै, दुहां सिरिया का आप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानख ते क्या होए आवै, ज्योतिष पावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किछ ले, ज्योतिष पावै सोई करे, अनजानत बिखिया मैं रचै, जे जानते अपने आप बचै, परमे पूला दे दस्तावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कशु न आवै, तिस तत्काल देह दिस प्रगटावै, जा को अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा ना गनै जगदीस, जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत या बनाई, नानक जीवै देख बड़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्ब को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, ज्योतिष पावै सोई फुंथियो, कबहू ऊंच नीच मैं बसै, कबहू सोग हर खरख, कबहू सोग हर खरंग हसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक्या मिलावन हार, कबहू निरत करै बहुपात, कबहू सोए रह दिन रात, कबहू महाक्रोध बिकराल, कबहू सर्ब की होत रवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहो पिखारी नीच का साजा, कबहू आप कीरत मह आवै, कबहू पला पला कहावै, ज्यो प्रभ राखै तिवहि रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मौन धारी लावै ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू से साधक मो ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावै, ज्यो प्रभ पावै तिवै नचावै, ज्योतिष पावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू साध संग ते हो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनास, मानता नाम रते करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राजा मान, सो नरक पाती होवत समान, जो जानै मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत, आपस कौ करवंत कहावै, जन्म मरै बह जोन परमावै, तन भूम का जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानकी हां मुक्त आगै सुख पावै, धनवंता होए कर गरबावै, तृण समान का संग न जावै, बहु लश्कर मानखी ऊपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत, किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान, सो जन नानक दरगै परवान, कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर फिर अवतार, अनक जतन कार्यात्म नहीं द्रवै, हर दरगै कौ कैसे गवै,
ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕਹੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਛੂਟੈ ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠਤਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਵਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਇਸ ਕੈ ਹੱਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੈ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਜੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਵੇਕ ਆਪੈ ਏਕ ਆਪੈ ਅਨੇਕ ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦੀ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਵਿਸਥਾਰ ਸਭ ਕਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਉਸਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਥਾਂ ਥਨੰਤਰੇ ਕੈ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਚਲ

जिस होवै सो परसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख, मन की तू प्रीत्याग, तिस्ते परै नाही किश कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहिर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। साध तेरे की चरनी पाओ, नानक कै मन एहो अनराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग।

करता कह। राज मैं राज, योग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी। त्याय त्याय भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत ना पाया। जा की लीला की मित नाहे, सगल देवहारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, जन दास नाम ते आवै से। ते गुण में जा को परमाए, जन्म मरै फिर आवै जाए। ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करै करंग। नाना बिदकीनो विस्तार, प्रभव नासी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए। नाना बिदकर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगले आकार। नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समाए समाणी। सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत। सत करणी निर्मल निर्मली, जिसै बजाए तिसै सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जा कर दे प्रवेश। सत निरत बूझै जे कोए, नाम जपत ता की गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत। जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवरना बुझ करत विचार। करते की मित ना जाने किया, नानक ज्योत पावै सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद। प्रभ कै रंग राजन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख कट नहार, जा कै संग तरै संसार। जन का सेवक सोवड भागी, जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। सलोक आद सच जुगाद सच, है पे सच नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार, पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत अवनहार। आप सत सत सब धारी, आपे गुण आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत सत जस सुनता। बुझनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जन मान्या, करन करावन तिन मूल पछान्या। जा कर दे विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। भय ते निरपव होए बसाना, जिस ते उपजया तिस माहे समाना। बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको पेना कह ना जाई। बूझे बूझन हर बबेक, नारायण मिले नानकेक। ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी। ठाकर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकर कौ सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कह रंग। सेवक कौ प्रभ पालनहारा, सेवक की राखै निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सा सा सुमारै।
अपने जन का पर्दा ढक, अपने सेवक की सर पर रख, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप्रतपा अपने सेवक की आपत रख, ताकि गतमत कोई ना लख, प्रभु के सेवकों को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है, जिसका सासना काटते आप, ताको राख्त देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके कर्तब बिरथे जात, मारे ना राखे अवरना कोए, सर्वजियां का राखा सोए, काहे सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत मंत्र तृपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शवरना ही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जंत्र बताने, मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम, बोलो जस जिह बादन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करै भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यों रह सो आए, जो होवा होवत सो जानै, प्रभ अपने का हुक्म पछानै, तिसकी महिमा कौन बखानौ, तिसका गुण कै एक न जानौ, आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक सेई जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले हे, मन तन अपना तिन जन दे हे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर्स सब पाप मिटावै, अवर सियाणप सगली छाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर से की करै प्रतपाल, सेव कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिके बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिखो नाम धन दे, गुर का सिख वट पागी है, सतगुर सिखा हलत पलत सवार है, नानक सतगुर सिखो जी नाल सुमार है, गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस कहो कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए नेकामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जानो जन मैं पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ परम, सहस सियाण पो लया ना जाई है, नानक ऐसा गुरवट भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सब चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करने आगाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेख हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए, जेबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण बबेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत कने ना पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सतबलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने,
ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰੇਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤੈ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮਾਏ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਟੇ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ, ਪਾਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਪਾ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੋਰਾਰੀ, ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਮਨ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਰਵਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭਿਆ ਬਨਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨ ਸਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਅਵਰਿਓ ਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਤ ਮੈਂ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵੱਥ, ਇਹੋ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਨ ਕਉ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠਤਾਵੈ, ਸੋ ਤਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ, ਅਨਕਿਓ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪਰਵਾਨ, ਮਨ ਪਰ ਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਦੈ ਦਿਸਤਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ, ਤਾਂ ਕਉ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਜਾਂ ਕਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਪਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਨਾਸੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ, ਆਵਾ ਗਮਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਅਨਕਿਓ ਭਾਵ ਨਾ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ, ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਤਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਬੰਤਾ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਮਨ ਸਨਾਥਾ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕਮਨ ਛੁਟਕਾਰ, ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਜੈ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਿਹ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਹੇ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ,
गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हम मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल, छाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावै सज तना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दर गै जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख, एको जाप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हरियाप, पूर्ण पूर्ण रहो प्रव्याप, अनक विस्थार एक ते पै, एक आराध प्राश्त गए, मन तन अंतर एक प्रभराता, गुरप्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरनाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जंजा चै प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम, साजना की मंग तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो, चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार, प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए, जिन चाखिया से जंत्र बताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुब्र परे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग, वडभागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेव की नोसदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन पाया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच्छ पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहया सा संग हजूरी, जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरे जे काल ना पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने, सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे अग्न में राख है, गुरप्रसाद को बिरला लाख है, सो क्यों बिसरे जे बिखते काड है, जन्म जन्म का टूटा गंड है, गुरपुर तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो, भगत पाए तरिया संसार, बिन भक्ति तन होसी शार, सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम।

दयालो भगत वचन सदा कृपालो अनाथ नाथ गोबिंद गोपालो सर्व कटा करत प्रतपालो आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हम निर्गुणी आर नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगा

आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार हो कश ना दृटेता पापुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक सह व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मोत कौ किस कौ गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तर तब कवन निडर कवन कत डर। आपन चलते आप करने हार नानक ठाकर अगम अपार। अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण कौ कहां विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। अपने आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै शरशिदर लगत कौ कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समाव तै किसे भूख कवन त्रिपतावै। करण करावन करण हार नानक करते का नाह सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद तेब कहा कूचीन। जब अपने आप उतार तब सगन अब सगन कहा विचार। जह अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप। जय अशाला शेदा भेद समा।

एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपने आप आपतियारा तै कौन कथा कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊते ऊचा नानक आपस कहो आपै पहुचा। जह आप रचियो परपंच आकार तेहो गुण मैं कीनो विस्तार। पाप पुनते पई कहावत कहो नरक कहो सुर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल हों मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान। आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह अवगत।

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब उपर होवत कृपालो, अपने कर्तव्य जानै आप, अंतर जामी रहो ब्याप, प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत, जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करण हार नानक एक जानिया, जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए, सेवक को सेवा बने आई, हुकम बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्याग त्रंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवारो उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितव नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोद दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजय सुन सुन अंध करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उदरै तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवै अमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाके मस्तक करम प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवा सलोक एक ओवंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ताँ की आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए चार कुंट दह दिस प्रमयो तिस बिन अवर ना कोए
वेद पुराण सिमरत सुने बहुविध करो विचार, पत उदाहरण पै हरण सुख सागर निरंकार। दाता भुगता देनहार तिस बिन रहन ना जाए, दाता भुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाए। जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए, गोबिंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए सा।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत, राम रतन मन तन बसै तज काम करो लो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेस, आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हेरै हर दरगै पतवंत, राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोए, नानक संत निर्मल पए जिन मन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग ब्रह्म तौ घणौ सदा संगारै मीच। हरख सोग सहसा संसार हाँ हों करत विहाए, जिन किए तिसे न जाननी चितवै अनक्यो पाए। आद ब्याद उपाद रस।

को खड़शास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार भगत सोहे गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खड़शास्त्र कह सिमरत कथा अनेक उत्तम उच्चो पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत।

मिले तो टाहिर सासंग लिव लाए, खाट खजाना गुण धारे नानक नाम ते आए। सलोक संत मंडल हर जस कथै, बोले सत सुभाए नानक मन संतोखी है। एक सिसो लिव लाए पौड़ी, सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार। संत संगत मैं पाई है अंत ना पारावार। आप तजो गोबिंद भजो शरण भरो हर राय, दुख हरे पव जल तरे मन चंदया फल पाए। आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान, अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण। सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे, नानक तिस बल हारणै हर हर नाम जपे। सलोक आठ पहर गुण गाइयै तजियै अवर जंजाल, जम कंकर जोहे न सकई नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद, सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगाश सदा आनंद। निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र इशनान, समय उच बसे ज्ञान। हर हर भजन पूरे गुरसंग, जप तरिया नानक नाम हर रंग। सलोक नारायण ने सिमरियो मोहयो स्वाद बिकार, नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार। पौड़ी नौमी नवे छदर अपवीत, हर नाम न जपै करत विपरीत। पारत्रे रमै बकै साध निंद, कर न सुनही हर जस बिंद। हिरै पर दर्ब उदर कै ताई, अग्न न निवरै तृष्णा न बुझाई। हर सेवा बिन एह फल लागे, नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे। सलोक दह दस खोजित मैं फिरयो, जत देखौं तत सोए। मन बस आवै नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। श्लोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इनविद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राख कठाए, मन तन सुध जपत हर नाए, सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पूव आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निहचा उपाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। श्लोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर शोका दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आशा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश समय प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसै दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। श्लोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरदेव, मन तन शीतल शांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम, दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवा गवन, आप तरिया कोटा बस्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम, गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। सलोक पूरन कबो ना डोलता, पूरा किया प्रभ आप, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। पौड़ी पूर्ण मां पूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ, जी जंत दयाल पुरख, सब ऊपर जाका हाथ, गुण निदान गोबिंद गुर, किया जाका होए, अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए, पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब जन नहार, संत सहाई शरण योग, आठ पहर नमस्कार, अकथ कथा न बुझिए, सिमरो हर के चरण, पतो धारण नाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। सलोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राय, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। पौड़ी कोई

सिर जोरा अमर है, नित देवे भला। जोरा दाख्या पुरख कमाम दे, से अपवित अमेद खला। काम व्यापक शुद्ध नर, से जोरा पुछ चला। सतगुर कै आखे जो चले, सो सतपुरख पल भला। जोरा पुरख सब आपो पाया, नो हर खेल सब खिला। सब तेरी बणत बनावनी, नानक पल भला। पौड़ी तू वेहो तू वे प्रवाहो, अथाहो है अतुल क्यों तुलिया। सेवड पागी जे तो त्याय दे, जन सतगुर मिलिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रिसै होर कच पिच बोल दे, से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है। ओ नांदर होर मुख होर है, बिख माया नो चख मर दे कड़ी है। श्लोक महला चौथा। सतगुर की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा काले। जिन अंदर कपट विकार झूठ, ओए आपे सच्चे वख कड्डे जजमाले। सच्यार सिख बै सतगुर पास कालन, कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले। जिन्ना सतगुर का आखिया सुखावै नाही, तिन्ना मोह भलेरे फिरै दईए गाले। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से किचर कवे राइयन मन मुख बेताले। सतगुर नो मिले सो अपना मन थाए रखै, ओह आप वरतै अपनी वथ नाले। जन नानक एक ना गुर मेल सुख देवै, एक आपे वख कड्डै ठगवाले। महला चौथा। जिन्ना अंदर नाम निधान हर, तिनके काज दईये आंदे रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंकर।

किया। सब जन को आए करै रह रास, गुरपुरे की वड्डी वड्याई, हर वड्डा सेवा तुल सुख पाया। गुरपुरे दान दिया हर निचल, नित बक्से चढ़े सवाया। कोई निंदक वड्याई देख ना सकै, ऐसो करता आप चाया। जन नानक गुण बोले करते के, भगता नो सदा रखदा आया। पौड़ी तू साहेब अगम दयाल है, वरदाता दाना, तो जेवड़ मैं होर को दिस ना आवई। तू है सुगड़ में रह मन पाणा, मोह कुटुंब दिस आमदा, सब चल नहारा आवण जाना। जो बिन सच्चे होरत चित लाएं दे, से कूड़ियार कूड़ा तिन माणा। नानक साहित आए तू, बिन सच्चे पच पच मोए अजाना। सलोक महला चौथा। अगों दे सत भाओ ना दिचै, पिछों दे आख्या काम न आवै। आद विच फिरै मनमुख विचारा, गली क्यों सुख पावै। जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की, सो कूड़ी आवै कूड़ी जावै। जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवै। ता अप्यो पीवै शब्द गुर केरा, सब काड़ा अंदेसा भ्रम चुकावै। सदा आनंद रह दिन राती, जन नानक अंदर हर गुण गावै। महला चौथा। गुर सतगुर का जो सिखिया खाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवै। उद्यम करे पलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरन आवै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दोख लै जावै। फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै, बहिंदिया उठदिया हर नाम ते आवै। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन पावै। जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। पौड़ी जो तुद सच ध्याए दे, से विरले थोड़े। जो मन चित एक आराधते, तिनकी बरकत खाहे असंख करोड़े। तुदनों सब ध्याए दी, से थाए पए जो साहेब लोड़े। जो बिन सतगुर से वे खांदे पैन दे, से मोए मर जमे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विस कड्डै मुख कोले, मन खोटे दईए विछोड़े। सलोक महला चौथा।

गुह पढ़ सगवी मल लाए मन मुख आया, पराई जो निंदा चुगली नोवे मुह कर कै भेजिया, ओथे पी मुह काला दुहावे मुखां दा कराया, तड़ सुनिया सबत जगत विच पाई, वे मुख सने नफरे पौली पौंदी, फावा होए कै उठ कर आया, अगे संगति कुड़मी वे मुख रलना ना मिले, ता वोटी भतीजी फिर आण कर पाया, हलत पलत दो बह गए नित भुखा कूके तिहाया, तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओं सच बह आप कराया, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो सच है मार पचाया, एहो अखर तिन आखिया जिन जगत सब यो पाया, महला चौथा साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर किथों रज खाए, जे साहिब कै कर वथ होवे सो नफर हथ आवे, अणहोंदी किथों पाए जिसदी सेवा कीती फिर लेखा मंगी, सा सेवा औखी होई नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी, नानक विचार है संत जानो चार वेद कहंदे, भगत मुखे दे बोल दे से वचन हो मंदे, प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुनंदे, सुख ना पाएन मुग्ध नारो संत नाल खहंदे, ओए लोचन ओना गुणे नो ओए अंकार सड़ंदे, ओए विचारे क्या करे जा भाग तुर मंदे, जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे ना संदे, वैर करे निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे, जो जो संत सरापिया से फिर पवंदे, पेड़ मुंडा हूं कटिया तिस डाल सुकंदे, श्लोक महला चौथा अंतर हर गुरु त्याईंदा वड्डी वड्याई, तुस दित्ती पूरे सतगुरु कटे नाही एक तिल किसे दी कटाई, सच साहेब सतगुरु कै वल है ता चख चख मरे सब लोक आई, निंदका के मोह काले करे हर करता है आप वधाई, ज्यों ज्यों निंदक निंद करे त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई, जन नानक हर यारा दया तिन पैरी आण सब पाई, महला चौथा सतगुर सेती गणत जे रखे हलत पलत सब तिसका गया, नित चहिया पाए चगू सुटे चखदा चखदा चढ़ पया, नित उपाव करे माया तन कारण अगला तन पी उड गया, क्या ओ खटे क्या ओ खावे जिस अंदर से सा दुख पाया, निर्वैर नाल जे वैर रचाए सब पाप जगत का तिन सिर लया, उस अगे पिछे टोई नाही जिस अंदर निंदा मोहे अंब पया, जे सोयने नो ओह हथ पाए ता खेहू से तीर रल गया, जे गुर की सरनी फिर ओ आवे ता पिछले अवगुण बख्श लया, जन नानक के अंदर नाम ते आया हर सिमरत किल विख पाप गया, पौड़ी तू है सच्चा सच तू सबदू उपर तू दीबान, जो तुद साहित्य आए दे सा सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजले सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिनी गुरमुख सालाहिया सच शब्द निशान, सच जे सच्चे सेव दे तिन वारी सद कुरबान, श्लोक महला चौथा तुर मारे पूरे सतगुरु से ही हुन सतगुर मारे, जे मिलन नो बहु तेरा लुची है ना दे मिलन करता रे, सत संगत टोई ना लहन वे संगत गुर विचारे, कोई जाए मिले हुन ओ नानो तिस मारे जम जंदारे, गुर बाबे फिटके से फटे गुर अंगद कीते कूड़ियारे, गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हथ एना विचारे, गुर चौथी पीढ़ी टिकया तिन निंदक दुष्ट सब तारे, कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की
ਤਿਸ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਹਨ ਲਖਮੀ ਖੜ ਮੇਲੇ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਰੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਧੂੜ ਤਿੰਨ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਤ ਪਿਆਰੇ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ ਕਉ ਆਪ ਦੇ

कूड़ ठगी गुजी ना रह, कूड़ मलम्मा प्लेट तरे हो, कूड़ी करन वड़े आईया, कूड़े स्यों लगाने हो। नानक सच्चा आप है, आपे नजर करे महला चौथा, सत संगत में हर उसत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करे पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण कौ सब कोई लोचै, नवखंड जगत नमस्कारिया, तुद आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर कौ सिरजन हारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों, तिस काला मोह जम मारिया, तिस अगे पिछे टोई नाही, गुरसिखी मन विचारिया। सतगुरु नो मिले सही जन उभरे, जिन हृदय नाम समारिया, जन नानक के गुरसिख पुत हो, हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा हाँ मैं जगत भुलाया, दुरमत बिखिया बेकार, सतगुर मिले ता नजर होए, मनमुख अंध अंधार, नानक आपे मेल लए, जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर भिजे, जिन्नी एक मन एक यारा दिया, तिनका कंध न कभू छिजे, धन धन पुरख साबास है, जिन सच रसना अमृत पिजे, सच सच्चा जिन मन भावदा, से मन सच्ची दरगह लिजे, तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजे। सलोक महला चौथा, सागत जाए निवै गुरिया गए, मन खोटे कूड़ कूड़ यारे, जां गुर कहे उठो मेरे भाई, बह जाए कुसर बगलारे। गुरसिखा अंदर सतगुर वरतै, चुन कड्डे लद्दो वारे, ओए अगे पिछे बह मोश पाए, नो ना रलनी खोटे आरे। ओना दा पक्षो उथै नाही, जाए कूड़ लहन पे डारे, जे सख्त नरखा वाई है लुचिया, बिकड़े मुख उगलारे। हर सागत सेती संग न करियो, ओए मारे सिरजनहारे, जिसका हो खेल सोई कर वेखै, जन नानक नाम समारे। महला चौथा, सतगुर पुरखिया गम है, जिस अंदर हर उर तारिया, सतगुरु नो अपड़ कोई ना सकई, जिस वल सिरजन हारिया। सतगुरु का खड़क संजो हर भगत है, जित काल कंटक मार विडारिया, सतगुरु का रखन हारा हर आप है, सतगुरु के पिछे हर सब यो बारिया, जो मंदा चितवै पूरे सतगुरु का, सो आपो पावन हार है मारिया। ए गल होवे हर दर गै सच्चे की, जन नानक अग विचारिया। पौड़ी सच सुतिया जिन्या राधिया, जा उठे ता सच चवे, से विरले जुग मैं जानिया, जो गुरमुख सच रवे, हों बलिहारी तिन कहो, जे अंदन सच लवे, जिन मंतन सच्चा भामदा, से सच्ची दर गए गवे। जन नानक बोले सच नाम, सच सच्चा सदा नवे। सलोक महला चौथा, क्या सवना क्या जागना, गुरमुख ते परवान, जिन्ना सास गिरास न विसरै, से पूरे

ताया प्या गणत है सब जग विच गणत है सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बणत है तू घट घट एक वरतदा सच साहिब चलत है सतगुर नो मिले सो हर मिले नाही किसै परतै सलोक महला चौथा एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है गुरमुख लाइय चित क्यों सास ग्रास विसारी है बहद्या उठद्या नित मरण जीवन की चिंता गई एहो जियाड़ा हर प्रभ वस ज्यो पावै त्यो रख तू जन नानक नाम बख्श महला तीजा मनमुख अहंकारी महल ना जाने खिन आगे खिन पीछे सदा बुलाई।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूम न गड़ई, मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां, रहंदे खोंदे निंदक मारियां नूं।

अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई, जिस सिमरत सुख पाई ऐ सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रह ना काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरण आई। श्लोक महला पंजवा, डिठड़ो हब ठाए ऊ ना काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिन्ना सतगुर भेटिया। महला पंजवा, दमनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे, वत सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तनी पौड़ी, सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीम ना जानी, जो जन पेटै साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख एह रतना खाणी, मस्तक होवै लिखिया हर सिमर प्राणी, तोसा दिचै सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा, अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरै भुख, नानक सच्चे नाम बिनु किस ना लथो दुख। महला पंजवा, मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच ना लद्या, नानक

तोहो न चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जोन पवाईया नू जब मार्ग मुते कीता पाए ने अपना दुख सेती जुते नानक नाए विसारे है संबंधी रुते। सलोक महला पंजवा उठन दया बहन दया सवन दया सुख सोए नानक नाम सलाहे है मन तन शीतल होए। महला पंजवा लालच अटिया नित फरै स्वार्थ करे ना कोए जिस गुर पेटै नानका तिसमन वसिया सोए। पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाओ मिठा साध आया तिन हर जना चख साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसै उठा एक निरंजन रव रहया पाओ दोया कुठा हर नानक मंगै जोड़ कर प्रभ देवै तुठा। सलोक महला पंजवा जाचड़ी सासार।

गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकर भाई मुक्तानंत पुकारन जाई अब कहो राम।

सूर चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत भाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर

हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया, गौड़ी कबीर जी दे मुहार।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कै चब कुमाराओं। कहत कबीर भले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया सुमाए रहाओ। काको जरे काहे हुए हान, नटवट खेले सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे नाम है जोगत्या।

कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर।

राग गौड़ी ग्वारे री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख मांगत दुखिया गै आवै, सो सुख हमो न मांगया पावै। बिखिया जो सुरत सुख आसा, कैसे होई है राजा राम निवासा रहाओ। इस सुख ते से ब्रह्म डराना, सो सुखमो साच कर जाना। सन कादक नारद मुन सेखा, तिन पी तन मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहां समाई। गुरप्रसादी जय दियो नामा, भगत कै प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आमन जाना, जिसका परम गया तिन साच पिछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पेओ, एह मन लीन पए सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन का रव रहे कबीरा। गौड़ी ग्वारे री अहनिस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पए लिव लागे रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होहे नायाना, कह कबीर राम नाम पछाना। गौड़ी पी सोरठ पी, रे जीन लज लाज तोय नाही। हर ताज कतकाहू के जाही रहाओ। जा को ठाकर ऊंचा होई, सो जन पर कर जात ना सोही। सो साहेब रहया परपूर, सदा संग नाही हर दूर। कवला चरण सरण है जाके, कहो जन का नाही करता के। सब को कह जास की बाता, सो सम्राथ निजपत है दाता। कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवरना होई। कौन को पूत पिता को का को, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग

कौन लाज बहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी, साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, पांसो हागण जानिए, गुरशब्द विचारे, किरत की बांधी सफर है, देखो बिचारी, एसनो क्यों आखी है, क्या करे विचारी, पई निराशी उठ चली, चित बंद ना धीरा, हर की चरणी लाग रहो, पाए सरन कबीरा, गौड़ी जोगी कह जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है शब्दी, एक है सिद पाई, हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो, ते बांधे बो फंदा रहाओ, जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बड़ हम ही, जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै, इन बिद माणक लही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है, कहो कबीर गूंगे गुड़खाया, पूछे ते क्या कही है, हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एको अंकार, सतगुर प्रसाद जह कछ आहा तहां किश नाही, पाई तत्त नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे, ए अवगन कत जाही।

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़ नहारो सदा अतीता एक ही है किसमाही। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टूटे जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही पर जाने ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प बिबरजित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बेयोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूबा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगर पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज इकीस पुरिया एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये पाचन से अडाई। जो कर पाचन बेग ना पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतन निकसै नतर रही उरजाई। छोड़ पसार इहां रो बपरी कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित कट नाम नाई उपजै फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रा मैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ। साध मिलै सिद्ध पाई है के ओहो जोग के भोग। दोह मिल कारज उपजै राम नाम संजोग। लोग जानै एहो गीत है एहो तो ब्रह्म विचार। ज्यो कासी उपदेश होए मान समर्ति बार। कोई गावै को सुनै हर नामा चित लाए। कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे। ओरे कर्म तर्म करते बहु संजम अहम बुद्ध मन जारे। ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे। ओरे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे। ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नाहे बिचारे। ओरे उन्मत मान हिरेओ मन माही गुर का शब्द ना तारे। ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे। ओरे कर्म भाग संतन संगाने काष्ट लो उधारे। ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे। ओरे कहे कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे। ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश। काम सो आए गज बस परे मन बवा रे अंक सहयो शीस। बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे। गयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे। लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे। नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गयो मन बौरा रे। माया यो व्यवहार जैसा रंग सुंभ का मन बौरा रे।
ਤਿਉ ਪਸਰਿਓ ਉਪਾਸਾਰ ਨਾਵਨ ਕਉ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬਉਰਾਰੇ ਪੂਜਨ ਕਉ ਬਹੁ ਦੇਵ ਕਹੋ ਕਬੀਰ।

तस कर निर्णय आवे। राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कत ही ना जावे। हमरा तन माधव गोबिंद तरणी धर, एह सार तन कही है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लही है रहाओ। इस तन कारण शिव सनकादक, खोजत पए उदासी। मन मकांजे बा नारायण, परै न जमकी फासी। निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी, तास सुमत मन लागा। जलत अंब थंब मन धावत, परम बंधन पौ भागा। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी। तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती, हम कर एक मुरारी। गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुप्त ना त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर ग्रह परयो। भगत बिन बिरथे जन्म गयो। साध संगत भगवान भजन बिनु, कही ना सच रहो रहाओ। ज्यों उद्यान कुसुम पर फुलत, कने ना कराओ लयो। तैसे प्रमता नेक जोन मैं, फिर काल हयो। या तन जोबन अरसुत दारा, पेखन कहो जो दयो। तिन्ही माहे अटक जो उर्जे, इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिन को मंदर, चौदे ठाट ठयो। कह कबीर पै सागर तरन कहो, मैं सदगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। मैं नाही कश आहे ना मोरा, तन तन सब रस गोबिंद तोरा रहाओ। इस माटी मैं पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, खिर मैं बिन सजाए हंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ। जात पावे ता हुक्म नावे, इस बेड़े को पार लंगावे। गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर पज सारिंग पानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नामी जोन छाड़, जो जग में आयो। लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रहाओ। गर्भ जोन में उर्द तप करता, तव जठर अग्न में रहता। लख चौ राशि जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो। कहो कबीर पज सारिंग पानी, आपत दिसै जात ना जानी। गौड़ी पूर्वी सुर्ग बासना बांछिया, डरिए ना नरक निवास। होना है सो होई है, मने न की जय आस। रमैया गुण गाई है, जाते पाइये परम निधान रहाओ। क्या जाप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या इशनान। जब लग जुगत ना जानिए, पाओ भगत भगवान। संपै देखना हरखिए, बिपत देखना रोए। जो संपै त्यों बिपत है, बिद ने रचिया सो होए। कह कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा भले, जेह कट बसै मुरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार। बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार। राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए, रस और रहाओ। और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रहाए। जो उपजै सो बिनस है, दुख कर रोवै बलाए। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। कह कबीर चित चेतिया, राम सिमर बैराग।
ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕੰਮ ਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲਿਓ ਸਾਸਾ ਉਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਭਗਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਬੇਗ ਮਿਲੀ ਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਓ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨੋ ਹਰ ਕੀ ਪਤ ਕਰੀ ਜੈ ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣੋ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀ ਜੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਮਾਝ ਬਨਾਰਸ ਗਾਉਂ ਰੇ ਓਆ ਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨੋ ਮੋਕੋ ਛੋਟ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਉ ਰੇ ਤੋਹੇ ਚਰਨ ਮਨ ਲਾਗੋ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ ਬਡ ਭਾਗੋ ਰਹਾਓ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ ਕਿਸਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਉ ਰੇ ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕਰ ਤੁਹੀ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ ਮੋਹੇ ਕਬੀਰਾ ਨਾਉ ਰੇ ਗੌੜੀ ਬਾਰਵੀਂ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਰਵੀਂ ਬਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ ਕਿਆ ਬਨ ਮੱਦੇ ਬਾਸਾ ਕਹਾਂ ਭਇਆ ਨਰ ਦੇਵ।

साहेब रोस तरह के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम कर का जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ।

आई अब मन जागत रहोरे भाई गफल होए कै जन्म गवायो चोर मुसै कर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर मैं रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चित होए रहो तौले परगास हो जारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्तन रूप ना पाई कहत कबीर नवै कर मूसे दसवें तत् समाई गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना शिव सनकाद जास गुन गावै तास बसै मोरे प्राणा ना रहाओ हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत गगन मंडल मैं ध्याना ना बिखै रोग पै बंधन भागे मन ही कर सुख जाना ना एक सुमात्रत जान मान प्रभ दूसर मनै ना आना ना चंदन बास भय मन बासन त्या कट्यो अब माना ना जो जन गाए त्याय जस ठाकर तास प्रभु है थाना ना तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना काट सकत शिव सहज प्रगासो एक समाना ना कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन माना ना रा गौड़ी पूर्वी बामन अखरी कबीर जियो की एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

तै मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है ना कोई। अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहो, जाको तीन लोक विस्तार। अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग अशेद। तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान। ओवंकार आद मैं जाना, लेखियार मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहा कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा। खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रहे, ता होए निखियाओ अखै पदल है। गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न धरी काना, रह बिहंगम कत ना जाई, अगै गह गै गगन रहाई। कग्गा घट घट निवसै सोई, घट फूटे घट कवै ना होई। ता कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अव कट कतावा। नंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह। चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र है चेतो चितकारी। चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छछा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा। रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा। जजा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, अस जर पर जर जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लहै। चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, झगर किए झगर ही पावा। नया निकट जो घट रहो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढ आओ, नेरा पायो ताहे। टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देख या टल।

रह लपट कट पर चौपावा, ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा। जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर रहा समाई। जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे। टड्डा टेग टूडे कत्याना, टूट ती टह गए पराना। चढ़ सुमेर टूड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

पांचों इंद्री निग्रह करी पापुन दो निर्वरई फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लख जाओ कोई दूर न परे फंक विचार है ता फल फंक।

ससा सोनी का कर सो दो, घट परचा की बात न रो दो, घट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंतर भवन राओ। खखा खोज पर जो कोई, जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो भव जल तरत ना लावे बारा। ससा सो सह सही सवार, सोई सही संदेह निवार, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा।

तवे मनमाना, है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बो सोग, लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजू न चेते, अब जग जान जो मना रह, जह का बिचरा तह थिर लह, बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सो अन पैर है, पंडित लोग कौ व्यवहार, ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जा कह जी जैसी बुद होई, कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी थिती कबीर जी की, श्लोक पंद्रह थिती सात वार, कह कबीर उरवार ना पार। साधक सिद्ध लखे जो पे ओ, आपे करता आपे दे ओ। थिती अमावस में आस निवारो, अंतर जामी राम सुमारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपो शब्द।

परवा प्रीतम करो बिचारो, घट में खेले अकट अपारो, काल कल्पना कदे ना खाए, आद पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग, माया ब्रह्म रमै सब संग, ना उबड़े न करता जाए, अकुल निरंजन एक कै पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै, आनंद मूल परम पद पावै, साध संगत उपजै विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंच

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जनते ऊ मुक्त भये, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तसवीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल।

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पुखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, प्रबंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, टारी ना टरै प्रमफास, प्रेम

अकाल मूर्त वजूनी से पंगुर प्रसाद राग आसा महला पहला कर पहला सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित पै सर्व समाले वाजे तेरे नादा ने का संखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परिशो कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले गावन तुदनो से समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़े रखी सर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाय तेरे जेते अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सा साहेब।

सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहब साचा नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जैसा मिलके आखण पाहे, वड्डा ना होवे काट ना जाए।

तू सर्वे पूर रहया लिवलाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी, काली नथ क्या वड्डा भया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंतरा पायो ताका, कंस छेद क्या वड्डा भया। रत्नो पाए तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपे क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप ना रेखा नाह दवाजै, शब्द निरंजन किया। करे वख्याण जाने जे कोई, अमृत पीवै सोई रहाओ, जिन पिया से मस्त पहे है, टूटे बंधन फाहे। ज्योति ज्योत समाणी पीतर, ता छोड़े माया के लाहे, सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया, सगल पवन तेरी माया, रारे रूप निरालम बैठा, नजर करे विच छाया। बीना शब्द वजावै जोगी, दर्शन रूपया पारा, शब्दा नहद सो सौ राता, नानक कह विचारा। आसा महला पहला, मैं गुण गल्ला के सिर पार, गली गल्ला सिरजनहार, खाना पीना हसना बाद, जब लग हृदय न आवै याद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किश ली जी ली जय रहाओ। मन की मत मता गल मता, जो किश बोली है सब खतो खता, क्या मोहले कीचे अरदास, पाप उन्दो साखी पास, जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जेही तू मत देहे पेही को पावे, तुझे आपे पावे तवे चलावे। राग रतन परिया परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते कहो धन माल, जे को आखे हो बिचार। आसा महला पहला, कर कृपा अपने घर आया, तामिल सखिया काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, शह भी आहने आया। गावो गावो कामणी बबेक विचार, हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ। गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होवा, जा सह मिलिया ता जानिया, तेहो लोका मैं शब्द रविया है, आप गया मन मानिया। अपना कार्ज आप सवारे, होरन कार्ज ना होई, जित कार्ज सतसंतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई। पणत नानक सबना का परे को सोए, जिसनो नजर करे सासो हागण होए। आसा महला पहला, गृह बन समसर सह सुभाए, दुर्मत गत पै कीर्त ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ। सतगुर सेव पाए रही थाओ, मन चूरे खड़ दर्शन जान, सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाओ। अधिक त्यास पेख बहु करै, दुख बिख्या सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुबदा छोड़ नाम निस्तरै। सिवत सलाहण सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोबिंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पै आगै जिंद। झूठ विकार महा दुख देहे, पेख वर्ण दिसै सब खेहे, जो पजै सो आवै जाए, नानक असर नाम रजाए। आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप, उजल मोती चुगै हंस, सर्व कला जग दिसै अंस, जो दिसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल ना दिसै रहाओ। बिरला बूझै पावै भेद, साखा तीन कह नित बेद, नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए।
ਮੁਕਤੋ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਰਵਾਤੋ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਦਾ ਬਿਕਸੰਤੋ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੂੜਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰੈ ਤਾਰ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਉਲਟ ਭਈ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਆਣਿਆ ਅਹਿਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ ਇਹੋ ਜਿਤ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਲਾਗੈ ਧੂਰ ਲਾਗੀ ਮਹਿਲ ਮਿਟੈ ਸੱਚ ਨਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾ।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन आवे मंत्र पित ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमें माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए, आसा महला पहला। जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

हर वार जिन पाया धन नारी हर सिउं राती शब्द विचारी आप तरै संगत कुल तारै सतगुर सेव तत् विचारै हमरी जात पत सचनाओ कर्म धर्म संजम सत पाओ नानक बख्श।

एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठावर ना पावे, ऐसे कर्महीन हर नाम ना त्यावे। गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत भौजल, गुर सबदी हर पार लंघाई रहाओ। जिन को आप

बुरा पला कहो किसनो कहिय, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लही है, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त वेद सिमरत बहु भेद, अठ सठ मज्जनु हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागे, नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे। आसा महला पहला, निम्न उपाय

प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया, आसा महला पहला ते तुका। कोई पीख को पीखिया खाए, कोई राजा रहा समाए, किसी मान किसै अपमान, टाहयो सारे तरे त्यान। तुते वड

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंध, खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पहो जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ, जा तुद पावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवै, विण नावै जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन

काया ब्रह्मा अमन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुस्पाती, हर नामा जजा चो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चज्याचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम समाल, एथे उथे निभी नाल, विणना वै होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक लिलाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचे दरबार रहाओ। सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खसम सुने साबास, सच्चे तख्त बल

क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर विडाणी, नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण, आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली, उपजे बिन सह दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है, बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है, तिस बख्से जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे, फिर स्यो मिलना ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा, हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया, तुम सामी इतना यवर कोई, जो तू राखे तिवि रहना, दुख सुख देवे करे सोई, आसा मनसा दो बिनास्त, त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है, संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता,

मोह कुटुंब मोह सवकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निद पाई, होवै पूत न कल्पै माई, एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, एत मोहे फिर

नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर सिउ रहै समाए, आसा महला पहला। आप करे सच अलाख्या पार, हाँ पापी तू बख्शनहार। तेरा पाणा सब किश होवै, मन अटकी चै अंत विगोवै रहाओ। मन मुख की मत कूड व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी। दुर्मत त्याग लाह किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई। सगली सौंदी तोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला, चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी। जा पंचरासी ता तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै। तौ जम कहां करे मोह सिउ आगै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता कायां भोगी। दया दिगंबर देह बिचारी, आप मरै अवरा नै मारी। एक तू होर वेस बहु तेरे, नानक जाने चोज ना तेरे। आसा महला पहला, एक ना परिया गुण कर तोवा। मेरा सह जागै हो निस्पर सोवा, इओ क्यों कंत प्यारी होवा। सह जागै हो निस्पर सोवा रहाओ। आस प्यासी से जयावा, आगे से पावा के ना पावा। क्या जाना क्या होए गारी माई, हर दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ। प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी, गया सो जो बन धन पछतानी। अजय सो जागो आस प्यासी, पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ। हम मैं खोए करे सिंगार, तव कामन से जरवै पतार। तव नानक कंते मन पावै, छोड़ वडाई अपने खसम समावै रहाओ। आसा महला पहला, पेव कड़ै तन खरी ए।

को सोई। कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पाव कितने किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबिया ले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा हो ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतू नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा घर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निरा फल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजै लख आवे लख जाहे जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजय कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच

लख मड़िया कर एक ठे एक रत्ती ले पाहे रहाओ। पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार, एथे उथे आगे पाछे एहो मेरा आधार। गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राओ, सच्चा नामन तां थी है जा एनस लागे पाओ। एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सुना है। आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख पुख तीर्थ किए। जोगी जदी जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पे, तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता, कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़ वेलायत देश गए, पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पे। सात सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए। दुखिए दर्द बंद दर तेरा, नाम रते दरवेश पे।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे नायवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तेरे मद सूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंदावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ जब से जय आवे ता नानक भोग करेई।

ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर सिफत कराए ताको कही है बंदा। आसा महला पहला गुर का शब्द मने मैं मुंद्रा खिंथा खिमा हंडावो जो किश करे पला कर मानो सहज योग निद पावो। बाबा जुगता जियो जुगै जुग जोगी परम तंत मैं जोगं। अमृत नाम ने रंजन पाया ज्ञान काया रस भोगं। रहाओ शिव नगरी मैं आसन बैसो कल्पते आगी बादं। सिंगी शब्द सदा तुन सोहै एनिस पूरे नादं। पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान बेभूतं। हर कीर्त रह रास हमारी गुरमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी समया नाना वर्णा नेकं। कहो नानक सुन पार्थर योगी पार ब्रह्म लिवेकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै कर करनी कस पाई है। पाठी पवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआई है। बाबा मन मत वारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया अहनस बनी प्रेम लिव लागी शब्दा नाहद गहया। रहाओ पूरा सच प्याला सहजे तिसे पियाए जा को नदर करे। अमृत कावा पारी होवे कैमद शूशे पाओ तरे। गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे क्या। सिफती रत्ता सद बैरागी जुवे जन्म ना हारे कहो नानक सुन पार्थर योगी खीवा अमृत धारे। आसा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष ना देई करता जमकर मुगल चढ़ाया। एती मार पई कर लाने तै की दर्द ना आया। करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारे ता मन रोस ना होई। रहाओ सकता सीहो मारे पै वगे खसमे सा पुरसाई रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती मुया सार ना काई। आपे जोड़ वे छोड़े आपे वेख तेरी वड़ियाई जे को ना उतराए वड्डा साध करे मन पाने। खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ताक्ष पाए नानक नाम वखाने। राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर दर्शन पावे वडभाग गुर कै सब सच्चे बैराग। खड़ दर्शन वरतै वरतारा गुर का दर्शन अगमे अपारा। गुर कै दर्शन मुक्तगत होए साचा आवसै मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरै संसारा जे को लाए पाओ प्यारा। पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार सतगुर सेवै परवार सधार। निगुरे कहो गतकाई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर कै शब्द सुख सांस शरीर गुरमुख ता को लगे ना पीर। जम काल तिस नेर ना आवै नान गुरमुख साज समावै। आसा महला तीजा शब्द मुआ विचों आप गवाए सतगुर सेवे तलना तुमाए। निरपव दाता सदा मन होए सच्ची बाणी पाए भाग कोए। गुण संग्रह विचों अवगुण जाहे पूरे गुर कै शब्द समाहे। रहाओ गुणा का गाहक होवै सो गुण जाने अमृत शब्द नाम वखाणे। साची बाणी सूचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए। गुण्या मोलक पाए ना जाहे मन निर्मल साचा शब्द समाहे। सेवड़ भागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया। जो गुण संग्रह

भगत रता जन सह सुभाए, गुर कै पैसा चै साज समाए, बिन गुर पूरे भगत ना होए, मन मुख रुने अपनी पत खोए, मेरे मानो हर जापो सदा ते आए, सदा आनंद होवै दिन राती, जो इच्छा सोई फल पाए रहाओ, गुर पूरे ते पूरा पाए, हृदय शब्द सच नाम वसाए, अंतर निर्मल अमृत सरन आए, सदा सूचे साज समाए, हर प्रभ वेखै सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता अवर ना कोए, गुर सागर पूरा भंडार, ऊतम रतन जवाहर अपार, गुर प्रसादी देवनहार, नानक बख्से बख्शनहार, आसा महला तीजा, गुर सायर सत

आए, ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रह थिर नाम समाणै। जमण मरना है संसार, मन मुखा चेत।

जन नानक गुरमुख प्रगट होए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा घर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। हमारा तड़ा हर आसमाई, हम हर सो तड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ। जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे, थिर ना रहे मन खोट कमाहे। हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है, एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कलयुग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए, जिसनों कृपा करे तिस सत्संग मिलाए। हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा भाव तड़े बह पावै, प्राया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै। जैसा बीजै तैसा खावै, जन नानका हर तड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवै। आसा महला चौथा, हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर लख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना, एको रव रहया कट अंतर, मुख बोलो गुरे अमृत बैना रहाओ। मैं मंतन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड भाग, दूजे पाए पवै बिख माया, पागहीन नहीं सतगुर पाया। अमृत हर रस हर आप पियाया, गुरपुरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सह।

नामहीन कालख मुख माया, नाम बिना त्रिक त्रिक जीवाया, वड्डा वड्डा हर भाग कर पाया, नानक गुरमुख नाम देवाया, आसा महला चौथा, गुण गावा गुण बोली बाणी, गुरमुख हर गुण आख वखाणी, जप जप नाम मन पया आनंदा, सत सत सतगुर नाम दिड़ाया, रस गाए गुण परमानंदा, रहाओ हर गुण गावे हर जन लोगा, वड्डे भाग पाए हर निरजोगा, गुण में हून माया मल तारी, विण गुण जन्म मोए हंकारी, शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मस्त तत् कढ़िए, आसा महला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वड्डे भाग गुरमुख हर पावे, नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास गिरासा, रहाओ नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सिखाई, नामहीन गए मूड़ नंगा, पच पच मोए बिख देख।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा में

पर जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावे सो उतरे पार। जन्म ना मरे ना आवे ना जाए, हर सेती ओरे समाए। आसा महला पंजवा, निज भगती सीलवंती नार। रूप अनूप पूरी आचार, जित ग्रह वसै सो ग्रह शोभावंता। गुरमुख पाई किने विरले जनता, सुकरणी कामन गुरमिल हम पाई। जज काज पर थाए सुहाई रहाओ, जिचर वसी पिता के साथ। तिचर कंत बहु फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया। गुरयाणी घर मैं ता सर्ब सुख पाया। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुगुण स्वरूप। इच्छ पूरे मन कंत स्वामी, सगल संतोखी देर जेठानी। सब परवार है माहे श्रेष्ठ, मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ। धन सो ग्रे हो जित प्रगति आए, जन नानक सुखे सुख विहाए। आसा महला पंजवा, मता करो सो पकन ना देई। सील संयम के निकट खलोई, वेस करे बहुरूप दिखावे। गृह बसन ना देई वख वख परमावे। घर की नायक कर वास ना देवे, जतन करो और जाए परे वै रहाओ। तुर की पेजी आई अमर, नौ खंड जीते सब थान थनंतर। तड़ तीर्थ ना छोड़े जोग सन्यास, पढ़ था के सिमृत वेद अभ्यास। जह बैसों तह नाले बैस, सगल भवन में सबल प्रवेश। होछी शरण पया रहन ना पाई, कहो मीता हो कै पह जाई। सुन उपदेश सदगुर पै आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वसिया गुण गाय अनंता, प्रभ मिलियो नानक पय अचिंता। घर मेरा एह नायक हमारी, एह अमर हम गुर की ए दरबारी। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, प्रथमे मता जे पत्री चलावो। द्वितीये मता दोय मानख पहुंचावो। तृतीये मता किश करो उपाया, मैं सब की छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सहजाया, दुश्मन दूत मोहे सुख पाया। रहाओ सतगुर मौका दियो आ उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश। जो किश करी सो तेरा तान, तू मेरी ओर तू है दीवान। तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै तार, आन ना बिया तेरी समसर। तेरे सेवक किसकी कान, सख्त पूला फरे बेबान। तेरी वड़ियाई कही ना जाए, जह कह राख लह गल लाए। नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ राखी पैज वजी वाधाई। आसा महला पंजवा, परदेश चाग सब देखो आया। वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले यानी। देख रतने मन लपटानी, सावा पारी द्वारे आए। वखर काडाओ सौदा कराए रहाओ। साहे पठाया साहे पास, अमोल रतने अमोला रास। विष्ट सो भाई पाया मीत, सौदा मिलिया निश्चल चीत। पौ नहीं तस्कर पौ ना पानी, सहज विहाजी सहज ले जानी। सत कै खटे दुख नहीं पाया, सही सलामत कर ले आया। मिलिया लाहा पै आनंद, तन सा पूरे बख्शिंद। एहो सौदा गुरमुख किने विर लै पाया, सहली खेप नानक लै आया। आसा महला पंजवा, गुण अवगन मेरो कछ ना बिचारो। नै देखियो रूप रंग सिंगारो, चज आचार किश बिद नहीं जानी। बहा पकर परे से जयानी, सुन बो सखी कंत हमारो। की अलो खसमाना, कर मस्तक धार राख्यो कर अपना। क्या जाने हो लोका जाना। रहाओ
सुहाग हमारो अगुण सोहयो, कंत मिलयो मेरो सब दुख जोहयो। आंगन मेरा शोभा चंद, निस्बासर प्रे संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगलिया परण शोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दृष्ट पाए सगल निधान, दुष्ट दूकी चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने, नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने, कहो नानक जो परै सिंगारी, थिर सुहागन संग पतारी, आसा महला पंजवा। दान दे कर पूजा करना, लैत देत उन मुकर परना, जित दर तुम है ब्राह्मण जाना, तित दर तू ही है पछताना, ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई, निरापराध चितवै बुरियाई रहाओ, अंतर लोभ फिर हलकाए, निंदा करै सिर पार उठाए, माया मूठा चेतै नाही, भरमे पूला बहुती राही, बाहर बेख करै कनेरे, अंतर बिखिया उतरी घेरे, अवर उपदेसै आप ना बूझै, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीजै, मूर्ख बम

दुख रोग भय गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाए भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुरसबदी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब नहीं चल थाए जगतो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दोख परे मेरे पछ अब पकड़े निश्चल।

हर हर राय नाम तेरा जब जीवे नानक ओत पोत मेरे संग सहाय आसा महला पंजवा अरड़ावे बिललावे निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाओ जे कोई उसका संगी होवे नाले ले सदावे अनहोंदा अजगर भार उठाए निंदक अग्नि माहे जलावे परमेश्वर कै द्वारे जे होए बतीते सो नानक आख सुनावे भगत जना का उसका आनंद है हर कीर्तन गाए बिकसावे आसा महला पंजवा जो मैं कियो सगल सिंगारा तौ पी मेरा मन ना पतियारा अनक सुगंधत तन मैं लावो ओह सुख दिल समान नहीं पावो मन मैं चितवो ऐसी आसाई प्रे देखत जीवो मेरी माई माई कहां करोयो मन ना धीरे प्रे प्रीतम बैराग हिरै रहाओ वस्त्र पे भूखन सुख बहुत बसेख है ओए पी जानो कितै ना लेख है पत शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत गृह ऐसा है सुंदर लाल प्रभावा ता सदा निहाल बिंजन भोजन अनक प्रकार रंग तमासे बहुत विस्तार राज मिलख अर बहुत फुरमाइस मन नहीं त्रापै तृष्णा ना जायस बिन मिलबे एहो दिन ना बिहावै मिले प्रभु ता सब सुख पावै खोजत खोजत सुनी एह सोए साध संगत बिन तरयो ना कोए जिस मस्तक भाग तिन सतगुर पाया पूरी आसा मंत्र बताया प्रभ मिलिया।

सोहनी स्वरूप सुजान विचखन अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ अत सूची तेरी पाक साल कर इशनान पूजा तिलक लाल गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान सब बिद खोई लोभ सुवान कापर पहरै पुगै भोग आचार करै शोभा मै लोग चोवा चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल अवर जो

जो तू कर सोई प्रवाण, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरा कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवां, निकट जी कै सद ही संगा। कुदरत वरतै रूप रंगा, करै ना चुरै ना मन रोम नहारा। अवनासी अवगात्या गोचर, सदा सलामत खसम हमारा रहाओ। तेरे दास

हर आज मिलक जोबन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगह काम न आवे छोड़ चला अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सब।

सब जग बौराया ना मिले सुख पाइया। क्या कहिए किसे आख सुनाइए, जे कहना सो प्रभु जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस। जे देह वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई, एत्यो तुझे ते आओ, नानक के प्रभु सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवा, अमृत नाम थुमारा ठाकर, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काई तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। धन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, धन सो कलयुग साध संकीर्तन गाई है, नानक नाम आधार ही हो। आसा महला पंजवां, आग्या ही ते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना, भूल चूक अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंध कूप महा कोरते, बहा पकर गुर काढ़ लिए। निरपव पहे सगल पव मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्ज सगल सवारे। गुण निदान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवा, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनों कहिए, सगले जी तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रख, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिस को बेप

ओरी रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुटे ओरी सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुटे ओरी दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बने ओरी महामंत्र गुरु हृदय बसेओ अचरज नाम सुने ओरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा लाल चोलना तैं तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुर ज्ञान प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल सुन री सखी ए हमरी काल प्रभ आप सिंगार सवारण हार रहाओ दूजा आसा महला पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोय मिली हदूर चुका निहोरा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाओ निकट आन प्रे से तरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं पिर घर आया थिर सुहाग नानक जन पाया आसा महला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना तरता दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया आसा महला पंजवा पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगरलिया कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बनाले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया शलिया बिकार बिखलिया सरन नानक प्रपुरख दयालिया आसा महला पंजवा एक बगीचा पेड़ घन करिया अमृत नाम तहां मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइय पद निर्बानी आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत यान जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुर ते पाया नानक दास धरी तिन माया

शास्त्र वेद पापुन विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाइए, यो अस्थान गुरु ते पाई है, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बहर फन सुखा, हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै, सो नाम जपै जो जन तुद पावै, रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तह दुख डेरा, हुक्म बूझै सोई परवान, सास सब जा का निशान, गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, पणत नानक मेरा मन सुख पाया, आसा महला पंजवा, जहां पठावो तै तै जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई, रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई, मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला वर्यंतर धारै, जन्म मरण का दुख निवारै, हृदय संभालै मुख हर हर बोलै, सो जन इत उत कतै न डोलै, कहो नानक जो राचै नाए, हर माला तां कै संग जाए, आसा महला पंजवां, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करै सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहे,

उनकै संगतूं गृह मैं माहर, उनकै संगतूं होई है जाहर, उनकै संगतूं रखी पपोल, उस बिना तू छुटकी रोल। उनकै संग तेरा मन महत, उनकै संग तुम साख जगत, उनकै संग तेरी सब थाटी, उस बिना तू होई है माटी। ओह बैरागी मरे ना जाए, हुक्मे बांदा कार कमाए, जोड़ विछोड़े नानक थाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओह मरता ना हम डरिया, ना ओह बिनसै ना हम कड़िया, ना ओह निरतन ना हम भूखे, ना उस दुख ना हम कौ दुखे, अवर ना को मारन वारा, जियो हमारा जियो देनहारा रहाओ। ना उस बंधनो ना हम बांधे, ना उस तंदा ना हम तांदे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सदकेला, ना उस सोच ना हम कौ सोचा, ना उस लेप ना हम कौ पोचा, ना उस भूख ना हम कौ तृष्णा, जा हो निर्मल ता हम जचना, हम किश नाही एक ओही, आगे पाछे एको सोई, नानक गुरख होए परम पंगा, हम ओए मिल होए एक रंगा। आसा महला पंजवा, अनक पात कर सेवा करिए, जियो प्रांतन आगे धरिए, पानी पखा करो ता जब मान, अनक बार जाइए कुर्बान। साई सुहागन जो प्रभाई, तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ। दासन दासी की पनिहार, उनकी रण बसै जी नाल, माथे भागता पावो संग, मिले स्वामी अपने रंग। जाप ताप देवो सब नेमा, कर्म धर्म अर्पो सब होमा, गर्भ मोह तज हो बोरेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमख निमख एही आराधो, दिन सरैन ए सेवा साधो, पहे कृपाल गोपाल गोबिंद, साध संग नानक बख्शिंद। आसा महला पंजवा, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना कोए, प्रभ की प्रीत हम मैं मल खोए, प्रभ की प्रीत सद निर्मल होए। सुनो मीत ऐसा प्रेम प्यार, जी प्राण कटकट आधार रहाओ। प्रभ की प्रीत पय सगल निदान, प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभ की प्रीत सद शोभावंत, प्रभ की प्रीत समिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एहो पवजल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगल उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है। आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरा कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान। आसा महला पंजवा, भूपत होए कै राज कमाया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया रहाओ। निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंग रसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल। आसा महला पंजवा, इनस्यो प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन कौ मोह, बाट काट करे बन बन जो है,
ਮਨ ਤਨ ਲਾਗੈ ਹੋਏ ਕੈ ਮਿੱਠੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਖੋਟੀ ਡੀਠੀ, ਅਗਰ ਉਸਕੇ ਵੱਡੇ ਠਗਾਊ, ਛੋੜੈ ਨਾਹੀ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਊ, ਮੇਲੀ ਆਪਣੇ ਉਨਲੇ ਬਾਂਧੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ, ਅਬ ਮੋਰੈ ਮਨ ਪਇਆ ਆਨੰਦ, ਭਉ ਚੂਕਾ ਟੂਟੇ ਸਭ ਫੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਸਗਲਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਬਸਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ, ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗਸ਼ਾਰ, ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਵਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾਓ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨ ਬਿਸਰਾਮ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਤਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਬਿਨਿਆ ਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਅੱਗ ਕੱਟ ਨਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ, ਸੂਰ ਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਕੌਲਾ ਬੱਪਰੀ ਸੰਤੀ ਸ਼ਲੀ, ਤਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਬਾਂਛੈ ਸੁਰਦੇਵ, ਅਮੋਗ ਦਰਸ ਸਫਲ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵ, ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੋਹੇ ਸੰਤ ਹੈ ਟਹਿਲ ਦੀਜੈ ਗੁਣਤਾਸ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਗਲ ਸੁਖ ਜਪ ਏਕੈ ਨਾਮ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣਗਾਮ, ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ, ਜਿਸ ਭੇਟ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਪਾਵੈ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤਮਿਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਵੈ ਰਹਾਓ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਮੱਜਣ ਤਿਸ ਪੂਜਾ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤਿਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਨੀਜਾ, ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਜਾਂ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਥਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਸੋ ਜਨ ਸਗਲੇ ਭਵਨ, ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਤਾਂ ਕੀ ਪਗ ਰੇਨ, ਜਾਂ ਕਉ ਭੇਟਿਓ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਜੋੜ ਤੇ ਆਵਾਓ, ਉਨ ਸਾਧਾਂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਓ, ਮੋਹੇ ਗਰੀਬ ਕੋ ਲਿਹੋਰ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਏ ਪਏ ਸਰਨਾਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਉਦਕੇ ਸੁਨਾਨੀ, ਸਦ ਹੀ ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਸੁਗਿਆਨੀ, ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੂ ਛੋਡੈ ਨਾਹੀ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਤਿਸ ਲਾਗੈ ਪਾਈ, ਸਾਲ ਗਿਰਾਮ ਹਮਾਰੇ।

सदा बैकुंठ जहां का चवर सब ऊपर झूले ताँ का धूप सदा पर फुले काट काट संपट है रे जा का अपग सभा संग है साधा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिसही लहना संत चरण ओ आयो सरना हाथ चढ़ो हर साल गिराम कहो नानक गुर की नोदान आसा महला पंजवा पंचपदा जे पेंड लूटी पनिहारी सो मार्ग संतन दूरारी सतगुर पूरे साच कहया नाम तेरे की मुक्ते बिथी जम का मार्ग दूर रहया रहाओ जह लालच जागाती काट दूर रही ओ जनते बाट जह आवटे बहुत घन साथ पार ब्रह्म के संगी साध चित्र गुप्त सब लिखते लेखा भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा कौ नानक जे सतगुर पूरा वाजे ता कै अरहद तूरा आसा महला पंजवा दो पदा साधु संग सिखायो नाम सर्ब मनोरथ पूर्ण काम बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने जब जब जीवा सारंग पाने करन करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ लाल जवेहर भरे भंडार तोट ना आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै जन कोए नानक ताकी परम गत होए आसा कर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय नित त्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मन आधार चरण कमल गुरदेव प्यारे पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जा कै मस्तक लिखिया भाग कहो नानक ता का थिर सोहाग

की तपत हरी पलो पयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अविनाशी अगमे अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवां

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना माया मोहे सबो जग बादा हमें पचय मनमुख मुँह राखा गुरु नानक बहा पकड़ हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसर स्वामी इहां उहां कामना प्राणी संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सोजन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाईए गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया पंच दूत सब वसगत आया जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह भौ ना जावे सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिय रहाओ। जा का दान निखूटे नाही भली भांत सब सहि समाही जा की बख्शना मेटे कोई मनवा साई साचा सोई सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण ओट गही निरपौ पद पाई है सास सास सो गुणित गाई है दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सल का होवा सुख कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सतगुर को जाओ। गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख विनासे सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए अग्न बुझी

मन बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वड़े भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर सच

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवां, सर्व सुखा मैं पालिया हर जेवड ना कोई, गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुर अपने सा सदकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा, एहो की जैदाना रहाओ। पागठ सच्चा सोए है जिस हर तन अंतर, सो छूटे महा जाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सतसार, ओह आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे, जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवां, साई अलख अपार पोरी मन वसै, दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ वंजा कुर्बान साई अपने, होवे अंध घणा मन तन जापने रहाओ। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धणी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैण पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेद कतेब संसार हब्बा हूं बाहरा, नानक का पात साहो दिसै जाहरा।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया से मरण में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन माणक पतियाना रे। आसा महला पंजवा दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रहन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरे चीत ना पावो रे नानक दास प्रव्या पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे। आसा महला पंजवा चार बरन चौहा के मर्दनो खड़ दर्शन कर तली रे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचो ही मोय शली रे। जिन मिल मारे पंच सूर बीर ऐसो कौन बली रे जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कली रे रहाओ। वडी कौम वस भाग नाही मोहकम फौजा ठली रे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे। आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ। बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लाए की रे बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख ना मनते टारी रे रहाओ। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे। आसा महला पंजवा नीकी सास संगानी रहाओ पहर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी चालत बैस्त सोबत हर जस मंतन चरण खटानी। हौ हौ रो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्याग सगल स्यान पा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम बाजो सगल दिसै शार। सो प्रभ जानिए सद संग गुर प्रसादी बुझिए एक हर कै रंग रहाओ। सरन समरथ एक केरी दूजा नाही ठाओ महापौजल लंघिए सदा हर गुण गाओ। जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए। एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिने अवर ना होर। आसा महला पंजवा जियो मंतन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता शरण रखन जोग। मेरे मन त्याय हर हर नाओ हलत पलत सहाय संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ। वेद शास्त्र जनते आवे तरण कौ संसार कर्म धर्म अनेक किरिया सभी ऊपर नाम आचार। काम क्रोध अहंकार बिनसै मिले सतगुर देव नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभ की सेव। चरण सरन दयाल तेरी तू निमाने मान जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रवतान। आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोबिंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत। सास सास त्याय सो प्रभ त्याग अवर प्रीत रहाओ करण कारण समर्थ सो प्रभ जी दाता आप। त्याग सगल सियाण पा आठ पहर प्रभ जाप मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार। कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म
गुण तेरा जस गाओ, सर्व सुख बड़ी वडियाई, जप जीवै नानक नाओ। आसा महला पंजवा, उद्यम करो करावो ठाकरो, पेखत साधु संग, हर हर नाम चिरावो रंगन, आपे ही प्रभ रंग। मन मैं राम नामा जाप, कर कृपा वसो मेरे हृदय, होए सहाई आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का चाओ। दया करो किरम अपने को, एह मनोरथ सुआओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे वस किश नाहे, ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किलविख काटे, मज्जन हर जन तूर, पाए भगत परम पव नासै, हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा, अगमै गोचर दर्श तेरा, सो पाए जिस मस्तक भाग, आप किरपाल किरपा प्रभ धारी, सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव, मल मूत मूड जे मुग्द होते, सब लगे तेरी सेव रहाओ। तू आप करता सब सृष्ट तरता, सब मैरिया समाए, धर्म राजा बिस्माद होवा, सब पई पैरी आए। सतयुग त्रेता द्वापर पणिय, कल युग ऊतमो जुगा माहे, एह कर करे सो वह कर पाए, कोई ना पकड़िए किसै थाए। हर जियो सोई करे, जे भगत तेरे जाचे, एहो तेरा बिरद कर जोड़, नानक दान मांगे, अपने संतां देह हर दर्स। राग आसा महला पंजवां, कर तेरवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे रहाओ। महा बिखादी दुष्ट अपवादी, ते पुनी संगारे, नरक पवंते नरक पड़ंते, तिनके कोले उदारे, कोई न जाने कोई न माने, से प्रगट हर द्वारे, कवन उपमा देव कवन वडाई, नानक खिन खिन वारे। आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे रहाओ, मोह कुटंब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे। कर कृपा राखे सतसंगे, नानक शरण आहे। आसा महला पंजवा, ते पदे ओहा प्रेम पिरी रहाओ, कनक माणक गज मोतियन लालन, नै ना नहीं राजन भागन, हुक्म ना साधन, किश किश ना चाही, चरणन शरणन संतन बंदन, सुखो सुख पाही, नानक तपत हरी, मिले प्रेम प्री। आसा महला पंजवा, गुरे दिखायो लोए ना रहाओ, इते उते कट कट कट कट, तू ही मोहे ना, कारण करना तारण करना, एक है सोहेना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, नानक सुख सुख सोए ना। आसा महला पंजवा, हर हर नाम या मोला, ओहो सहे सोहेला रहाओ, संग सहाई छोड़ ना जाई, ओहो अगे अतोला, प्रीतम पाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला, अलख लखाया गुरते पाया, नानक एहो हर का चोला। आसा महला पंजवा, अपनी भगत निबाहे, ठाकर आयो आहे रहाओ, नाम पदार्थ होए सकारथ, हृदय चरण बसाहे, एह मुक्ता एह जुगता, राखो संत सगाहे, नाम ते आवाओ सह समावाओ, नानक हर गुण गाहे। आसा महला पंजवा, ठाकर चरण सुहावे, हर संतन पावे रहाओ, आप गवाया सेवक माया, गुण रस रस गावे, एक आसा दर्श प्यासा, या ना पावे,
दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा। एक सिमर मन माही रहाओ, नाम त्याओ हृदय बसावो, तिस बिन को नाही प्रभ सरणी आई है, सर फल पाई है सगले दुख जाही। जियन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही आसा महला पंजवा। हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवै सर फल पावै, सो जन सुखिया हुआ राज कहावै, हो कर्म कमावै बांध्यो नली परम सुआ। कहो नानक जे सतगुर भेटिया, सो जन ने चलथिया आसा महला पंजवा। कर चौ दवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ओहो निहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रह रहाओ। जो प्रभ पावै जन्म ना आवै, हर प्रेम भगत हर प्रीत रचै, प्रभ संग मिली जय हो मन दी जय। नानक नाम मिलै अपनी दया करहो आसा महला पंजवा। मिल राम प्यारे तुम बिन धीरज को ना करै रहाओ, सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए, प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही। वर्त नेम संयम कर थाके, नानक साध सरण प्रभ संग वसै। आसा महला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बिकार माया माद सोयो, सूई बूझ ना आवै, पगर केस जम उठारियो तद ही कर जावै। लोभ बिखिया बिखै लागे, हिर वित चित दुखाही, खिन भंगना कै मान माते असर जाने नाही। रहाओ बेद शास्त्र जन पुकारै, सुनै नाही डोरा, निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा। डान सगल गैर वजह भरिया, दीवान लेखै ना परिया, जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो, तो एक कीर्त गाया, मान तान तज सियानप सरण नानक आया।

हो कृपा पाए सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मंदर लाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब तजी मने की काम करा चिर चिर चिर चिर भया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनों दिखावो मोहे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवा को बिखम गार तोरे आस प्यास तो हो मोह परम ही ते हो रह रहाओ काम क्रोध लोभ मान एह ब्या दिशोरे संत संग नाम रंग गुण गोविंद गावो अंदिनो प्रभ त्यावो भ्रम पीत जीत मिटावो निद नाम नानक मोरे आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया जप राम राम राम मन संतना कै चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतत पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवा हरख सोग बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ खिनहू पै निरपै खिनहू खिनहू उठतायो खिनहू रस भोगन खिनहू खिनहू तजायो खिनहू जोग ताबो पूजा खिनहू परमायो खिनहू कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो राग आसा महला पंजवा कर सतारवा आसावरी एको अंकार सतगुर प्रसाद गोबिंद गोबिंद कर हां हर हर मन प्यार हां गुर कया सोचित धर हां अनस्यो तोर फेर हां ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ पंकज मोसर हां पग नहीं चले हर हां गहड्यो मूड़ नर हां अन ना उपाव कर हां तौ निकस सरण पैरी सखी थिर थिर चित थिर हां बन ग्रह समसर हां अंतर एक पिर हां बाहर अनेक तर हां राजन योग कर हां कहो नानक लोग या लोगीरी सखी आसावरी महला पंजवा मनसा एक मान हां गुरस्यो नेत ध्यान हां दृढ़ संत मंत ज्ञान हां सेवा गुर चरान हां तो मिलिया गुर कृपान में।

असंख पाओ, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख योग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख

सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरे ना ठगे जाहे, जिन कै राम वसे मन माहे, तिथे भगत वसे के लो, करे आनंद सच्चा मन सोए।

नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते कम सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसड़िया जो होवे सह सो।

मद देख फूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पौन पीण अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी खिर में खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से विजोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणजया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी

तरह रोग बड़ा मनमाग क्यों दर गए पद पाई है जहाँ हारना वस्ते मनमाग गुर मिले है सुख पाई है अगन मरे गुण माग मान रहे अहे इन सहर गुण सार जिन खिन पलनाम नीस्तर है।

कीना सुने ही गोरिये आपन कन्नी सोए लगी आवे सौरे नितन पे या होए नानक सुती पेई है जान वरती सन गुणा गवाई गंठड़ी अवगुण चली बन तिरी राग महला पहला कर दूजा आपे रसिया आप रस आपे रामनहार आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतार रंगता मेरा साहेब रव रया भरपूर रहाव आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बदरंगला सखिये मेरा लाल नेत्रवे सुहागणी देख हमारा हाल प्रणवे नारक बेनती तू सर्वर तू हंस तौर तू है कविया तू है आपे वेख विरस

दूर आपे ही आपे मंज म्यानो आपे वेखे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जोत पावे नानक हुक्म सोई परवानो। श्री राग महला पहला कर चौथा कीता कहा करे मनमान देवन हारे कहे हथ दान पावे दे न देई सोए कीते कहे कहे क्या होए आपे सच पावे ते

कर पहला जेसी की सरकार है तेसी का सब कोय गुरमुख कार कमामणी सच घट प्रगट होय अंतर जिसके सच बस सच्चे सच्ची सोय सच मिले से नाम बिछड़े तेन निकरवासा होय मेरे राम मैं हर बिन अवर न कोय सदगुरु सच प्रभ निर्मला शब्द मिला वा होय अरहाओ शब्द मिले सो मिल रहे जिसनु आपे लहे मिलाए दूजे पाए को ना मिले फिर आवे जाए सब में एक वर्तदा एको रहा सुमाए जिसनु आप दयाल होए सो गुरमुख नाम सुमाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की वाद करे विचार मत बुद्ध पवी ना।

संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, हरहाव गुरमुख सदा सुहागणी, तिर रख्या उर धार, मिठा बोले निव चले, सेज रवे पतार, थोबावंती सुहागणी, जिन गुर का खेत अपार, पूरे भाग सदगुर मिले, जा भागे का उदय होए, अंतरों दुख प्रम कटिए, सुख प्राप्त होए, गुर के पाणे जो चले, दुख न पावे कोए, गुर के पाणे विच अमृत है।

अमृत सच्चा नाम है, तैना कछु न जाए, पीवत हु परवान पया, पूरे शब्द समाए, आपे देता पाई है, होर करना किशु न

जत सत संजम नाम है, विणनावे निर्मल ना होए, पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए, नानक सहजे ही रंग वर्तदा, हर गुण पावे सोए। श्री राग महला तीजा, काया साधे उर्द तप करे, विचो होमे ना जाए, अध्यात्म कर्म जे करे, नाम ना कब ही पाए, गुर कै शब्द जीवित मरे, हर नाम से मन आए, सुन मन मेरे भाजे सदगुर सरना, गुर प्रसादी छुट्टी है, विग भवजर शब्द गुर तरना, हरहाओ त्रैगुण सभा ता।

अंतर तेरे हर बसे, गुर सेवा सो पाए। अरहाओ सच बाणी सच शब्द है, जहां सच तरे प्यार, हर का नाम।

क्या जप करी तगुर पूछो जाए, तगुर का पाणा मन लई विचो आप गवाए। एहा सेवा चाकरी नाम से मन आए, नामे ही ते सुख पाईए सच्चे शब्द सुहाए। मन मेरे अनदिन जाग हर चेत, अपनी खेती रख ले ऊंज पड़ेगी खेत। हरहाओ मन की इच्छा पूरिया शब्द रहा भरपूर, पाए पाए भगत करे दिन राती हरजू वेखे सदा हदूर। सच्चे शब्द सदा मन राता भ्रम गया शरीरों दूर, निर्मल साहिब पाया साचा गुणी धीर। जो जागे से उबरे सूते गए मुहाए, सच्चा शब्द ना पछाण्यो।

पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिन्हें मेरा प्रत्याया नानक तिन कुर्बान, श्री राग मोहल्ला पंजवा मिल सदगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक स्यों लिवलाए। मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखे पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाए। मेरे मन गुर सब

मेरा निर्मल इस दिन रहन ना जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए, चारे कुंडा पालिया सहबन अवर ना जाए, इस आगे अरदास कर जो मिले करतार, तल गुरदाता नाम का पूरा जिस पंडा।

क्या थोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रैन प्रौण उड़चल से प्रभात क्या तू वृत्ता ग्रस्त स्यों सब फुल्ला की बागात मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रलोड़ सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़ लख चौरासी परमतया दुलाभ जन्म पायो ए नारक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए श्री राग महला पंजवा तित्तर वसे सोहलड़ी।

पौ संत सरणी लाग चरणी, मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे एक करणी सार। आव छोड़ सब होए एना जे दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार, श्री राग महला पंजवा दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना, दूते रहत भगत है कोई विरला जाना, ठाकुर सर्वे समाना क्या को सुनो स्वामी, तू वड़ पुरख सो जाना। रखाओ मान अवमान मंद सो सेवक नाही, तत्समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही, कैन कहामन यो कीर्त करला कथन कैन ते मुक्ता, गुरमुख कोई विरला गात अवगत कछ नदर न आया, संतन की रेण नानक दान पाया।

पाए, पुर राखे से उबरे हाथे से लाए। हर जीव सबत पछाणिए साजर ते गुरवाक, तेत तन मैल न लग गई सच कर जिस ओ ताक। नदर करे सच पाईए बिन ना वेख्या साक, जिन्नी सच पछाणिया छे सुगिए जू चार। हो मैं तिस ना मार के सच रखिया उर तार, जग में लहा एक नाम पाई गए गुर विचार। सचो वखर लदिए लाभ सदा सच रास, साची दर गए बैसई

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रसा दीप अनूप जोत तेर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पै पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सबको दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख समकर जानिए शब्द ते सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधक नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाऊ सब बलिहारे जास, चौदुख मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भक्ति पाए विगुणिया मुख काला पद खोए, जिन्नी नाम सारिया अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप शाने कर।

तेर रहे सुहाग भाई रे अबर नहीं मैं ताओ मैं तन्ना मन दान है गुरदिया बल जाओ अरहाओ गुरमत पात साबा तिस तिसके संग मिलाओ जिबन कड़ी ना जीवो बिन ना वे मर जाओ मैं अंदले नाम ना विसर एक टिकी कर जाओ गुरु जिना का अंदला किले ना गीटाओ बिन सतगुर नाओ ना पाई है बिन नावे क्या सुहाओ आए गया पछतावन जो सुन्य कर काओ बिन नावे दुख दिहोरी जो कलर की पीत तब लग मैल ना पाई है जावलग साज ना चीत सब दर पे कर बाई है निर्वाणी पद नीत हाँ गुर पूछो अपने गुर पुशकार कमाओ शब्द सलाही मान वस है हाँ में दुख जल जाओ सहजे होए मिलावड़ा साचे सच मिलाओ सब दरते से निर्मल है तक काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सत सदा हर रखे और तार सो क्यों मनो मसारी है सब जिया का आधार सब मरे सो मर गए

वारो वार सब सलाए आपको वडो वडेरी होए। गुरमन आप ना चीनिए कै सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला बिन पिर तन सी गारिये, जो बन बाद खुआर ना माने सुख सेजड़ी। बिन पिर बाद सीगार दू कणो दोहागणी, ना कर सेज पतार मान रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए, हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सीगार। सच माने पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार, गुरमुख जान स जानिए पुर मिली गुण चार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साज बगसया कीमत कहन न जाए। हर वर कर सुहागणी निर्मल सचे नाए, मन में मनुआ जे मरे ता पिर रावे नार। एक तागे रा मिले काल मोतियन का हार, संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाणे रब रखे ना ते काल संताए। साहेब अतुल ना तोलिए कसर न पाया जाए, वापारी वणजारिया आए वजो लखाए। तारक मावे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तुमाए। गुरमुख तोल तुलाए सी सच तरह जी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल। आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कतने कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार। काया सोच ना पाई है

साचो साहिब सेवीए गुरमुख अकथो कात आवे जाए पवाईए पए किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटीए लिखिया लेख रजाए बिन घर नाम ना छुट्टीए गुरमत मिले मिलाए तिस दिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हो में ममता जल बलो लोभ जलो अवमान।

रवरय बक्से पवित पंडार अरहाओ रे मन ऐसी हरस्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर यो अल कौतो सो कणो मन तन सांत शरीर व्यंजल कड़ी न जीवै प्रभ जाने अव पीर रे मन ऐसी हरसों प्रीत कर जैसी चातक मेह सर पर थर हरी आवले एक बूंद न पवी के कर मिले सो पाईए किरत पया सिर देह अरे मन ऐसी हरसों प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवटने आपे खवे दुध को खपन ना दे आपे मेल सुनिया सच वड्याई दे अरे मन ऐसी हरसों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खेन पल नींद न सोवई जाने दूर हजूर मनमु सोजी ना पवे गुरमु सदा हजूर मनमुख गणत गणामणि तरता करे सोहोए ताकि कीमत ना पवे जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाईए सच मिले सुख होए सच्चा रहो न टुटे जे सरगुर पेटे सोए ज्ञान पदार्थ पाईए तेर पवन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरे जे गुण का घाक होए खेल गए से पंखणु जो चुगदे सर तल कड़ी के मोद के चलना खेल अज के कल जे तू मिले सो मिले जाए सच्चा पिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजे पौमे मैल न जाए सो हंग आ पछाणिए शब्द भेद पतियाए गुरमुख आ पछाणिए अवर के करे कराए मिले आका क्या मेलिए शब्द मिले पतियाए मानमुख सोजी ना पवे विछड़ चोटा काए नानक दर कर

मैं तुद बिन अवर ना पावई, तू पावे सुख होए। हरहाओ नाम सलाही रंग स्यों, गुर के शब्द संतोख। जो दिसे सो चलसी, कूड़ा मोह ना वेख। वाट बटाऊ आया, नित चलदा सा देख। आखने आखे केतड़े, गुर बिन बूझ न होए। नाम डाई जे मिले, सच रपे पद होए। जुत पावे से पले, खोटा खरा न कोए। कुरसरनाई छुट्टिए, मनमुख खोटी रास। अच ताद पासा की, कड़ी गए शब्द विगा।

राम नाम मन विद्या अवर के करी विचार शब्द सुरत सुख उपजे प्रवरतो सुख सार क्यों पावे तू राख तू मैं हर नाम आधार मन रे सची खसम रजाए जिन तन मन सा सिगारिया ते सेती लिवलाए हरहाओ तन बै संतर होमिए एक रत्ती तोर कटाए तन मन समदा जे करी अन्तन अग्न जलाए।

राम नाम तन निर्मलो गुरदाद करे प्रसोए रहाओ। राम नाम तन निर्मलो जे देवे दे मुनहार आगे पूछना हो वही जे बेली कुर करतार। आप चिड़ाए छुट्टिए आपे बख्शन हार मन गुजाने अपने धिया पूत संजोग नारी देख विगासीए नारे हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले तहे निस हर रस भोग चित ले वित जामुन सागत डोल डोलाए बार टूंड गुचिए कर्म वस्त सुधाए मन भखौ में कर्म सी गुरमुख पल्ले पाए। साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रगत बिंद का इव तनो अग्नि पास पिराण पौने के वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगिए मुआ न लोड़े कोए सुख जीवन तिसिया किए जिस गुरमुख वसिया सोए नाम होने क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए ज्यो सुपने निस पुलिए जब लग निंद्रा होए तू सरपन केवल जीड़ा अंतर होमे दोए गुरमत होए विचारिए सुबना एव जग लोए अगन मरे जल पाईए जो बारक दूते माए बिंदल कमल सो नाथिए।

सिद्ध बह दे सुदान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन सिख पीर सलार तार कूच कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए वखाणी है विरला ता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती जलथल मई अल सोए अलाओ अलाखे गम कादर करनगार करीम सब दुनी आमन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनु आखिए जिस सिस न होवी लेख असमार तरती चलसी मुकाम ओही एक दिन रव चले निस सा चले तारका लख परोए मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए महले पहले सतारे अष्टपदिया श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत कीजे।

है, क्या माया कर्म कमाए, तो सुख ए जीव बद है, हम में कर्म कमाए, पिन शब्दे परम न चूकई, ना विचों हम में जाए, पिन प्रीति भगत न होवई, फिर शब्दे थाए न पाए, शब्दे हम में मारिए, माया का प्रम जाए, नाम पदार्थ पाइए, गुरमुख सहज सुपाय, बिन गुर गुण न जापनी, बिन गुण भगत न होए, भगत वछल हर मन मसया, सहज मिलया प्रसोए, नानक शब्दे हरसा लाइए, कर्म प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा, माया मोह मेरे प्रभु कीना, अपे परम पुलाए, मानव कर्म करे नहीं बूझे, बिरथा जन्म गवाए, गुरबाणी इसी जग में चानन, कर्म वसे मन आए।

परम खुलाए पढ़िए कुणिए क्या कथिए क्या मुंडो कुत्था जाए। चौथे पद में सहज है पुरमुख पल्ले पाए निर्गुण नाम निधान है फैजे सोजी होए। गुणवंती सालाया सच्चे सच्ची सोए उलिया सहज मिलाए सी शब्द मिलावा होए। किन सहजे सब अंध है माया मोह गुबार सहजे की सोजी पई सच्चे शब्द पार। आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार सहजे अदिष्ट पछाणिए निर्भव ज्योत निरंकार। हवना जिया का एक दाता ज्योति ज्योत मिलावन हार पूरे शब्द सराई है जिसदा अंत न पारावार। ज्ञानिया का तन नाम है सहज करे व्यापार अन्न लाहर नाम लैन ला

रहत जुगता जोगी कहत मुगता तपसी तपह राता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवे प्रकार पंडित वेद पुकार गृहस्थी गृहस्थ धर्महाता एक शब्दी बहुरूप अवधूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती आ परसा एक लूक न देवह दर्शा एक मन ही ज्ञाता ताट न किन ही कहाया सब कहते हैं पाया जिस मिले सो पगता सागल उगत उपावा त्यागी शरण पावा नानक गुरचरण पराता एक ओंकार सदगुर प्रसाद श्री राग मोहल्ला पहला कार तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत न पाया थुर्ग मछ पयाल जियो होंवारी होंवारणे कुर्बान तेरे नाव नो हरहाओ तू संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया वेख कीता अपना तर कुदरत पासा टाल जियो प्रगट पहारे जापदा सब नावे नू परतापदा सदगुर बाज ना पायो ता मोही माया जाल दियो सदगुर कौ पल जाइए जित मिले परमगद पाइए सुर नर मुंदन लोच दे तो सदगुर दिया बुझाए जियो सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम खानिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो यो जगत परम भुलाया आपो तुद खुवाया।

तेरे अंतर शब्द वसाया सईयां से सोहागनी जिन सई नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा।

जो जुग जुग सद पीढ़ी गुरु चलंदी, जो जुग पीढ़ी चले सदगुर की, जिनी गुरमुख नाम ते आया, हर पुरख ना कभी बिनसते जावे, नित देवे चढ़े सुवाया, नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी, हर राम राम मेरे बाबला, फिर मिलतन वेल बधंदी, श्री राग महला पंजवां, शांत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जीव मित्रा, गोविंद नाम सुमाले मन प्यारे जी मित्रा, हर निभगे तेरे नाले, संग सगाई हर नाम त्याई, बिरथा कोई न जाए, मन चिंदे से ही फल पावे, चरण कमन चित लाए, जल तल पूरे आपन वारी, घट घट नजर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीतम, साध संग प्रम जाले, मन प्यारे जी मित्रा, हर बिन झूठ पसारे, मन प्यारे जियो मित्रा, बिरसा गृह संसारे, चरण कमन कर भोयत करते, सहसा दुख न व्यापे, और पूरा पेट वडभागी, आठ पैर प्रभ जापे, आद जुगादी सेवक स्वामी, भगता नाम आधारे, नानक सिख दे मन प्रीतम, पिन हर झूठ पसारे, मन प्यारे जीव मित्रा, हर लब्दे खेप सवली, मन प्यारे जीव मित्रा, हर दर निचल मल्ली, हर दर सेवे अलख अपेवे, निचल या सुन पाया, ते जन्म ना मरण ना आवन जाना, संसार दुख मिटाया, चित्र गुप्त का कागद फारिया, जमदूता कशु न चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली, मन प्यारे जीव मित्रा, कर संता संग निवासो, मन प्यारे जीव मित्रा, हर नाम जत पर गासो, सिमर स्वामी सुखे गामी, ये सगली कुनिया, पुरबे कुमाए श्री रंग पाए, हर मिले चिरीम शून्या, अंतर बार सर्वत रव्या, मन उपजिया विश्वासो, नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संता संग निवासो, मन प्यारे जीव मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना, मन प्यारे जीव मित्रा, हर जल मिल जीवे मीना, हर पिया घाने अमृत बाने, सर्व सुखा मन उठे, श्री तर पाए मंगल गाए, यश पुन्नी सदगुर तुठे, लली ने लाए नौंद पाए, नाओ सर्वस ठाकुर दीना, नानक सिख संत समझाई, और प्रेम भगत मन लीना, श्री राग के शांत महला पंजवा, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद दखना, हठ मजाहू मापिरी, पसे क्यों दीदार, संत सरणाई लभणे, नानक प्राण आधार, शंत चरण कमल स्यों प्रीत, रीत संत मन आवे जियो, दुतिया पाओ विपरीत, अनीत दासा ने पावे जियो, दासा ने पावे बिंदर सावे, एक खेन तीर्ज क्यों करे, ना बिहूना तन मन हीना, जल बिल मछली ज्यो मरे, मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे, कुण साध संग मिल गावे, नानके स्वामी तार अनुग्रह, मन तन अंक सुमावे, दखना सोहंदड़ो हवठाए, ओए ना दिसे जुजड़ो, खुलड़े कपाट, नानक सतगुर पेड़ ते शंत, तेरे बचन अनूप अपार, संतन आधार, पानी बिचारिये जियो, सिमरत साध गिरास, पूर्ण बिस आस, क्यों मनो बिसारिये जियो, क्यों मनो बिसारिये, निभख नहीं टारिये, गुणवंत प्राण हमारे, मन बाशित फल देत गए स्वामी, जी की बिरथा सारे, अनाथ के नाथे,
سب کے ساتھ جب جوئے جمن ہاری ہے نارگ کی بے ننتی پرپ ہے کرپا کر پوج لتاری ہے دکھنا توڑی مجن ساد کے سائی سی کرپال لدے ہبے تھوکڑے نانک ہر تن مار

सुनयोग शांत प्रेम ठगोरी पाए रिहाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दो सब जोया भगत लखेण तर वस पए मन सरसुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सा मिट गए सखी मंगलो गाया यश पुजाया बौड़ ना माया होया कर गए लीने नानक प्रा प्यारे संसार सागर नहीं पोया डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पागम थागे से नानक हरंग मान।

हर आपे परम पुलाएगा, हर आपे ही मत दे, गुरमुखा मन प्रकाश है, से विरले के ही के, हों बलेगारी तिन को, जिन घर पाया गुरमते, जन नानक कमल प्रकाशिया, मन हर घर मुठड़ा है, मन हर घर जपन करे, हर गुर सुननाई पज पो जिंदु, सब केल विख दुख पर हरे हरहाओ, धड़कड़ रमैया मन मसै, क्यों पाइए कित पत, गुर पूरा सतगुर पेटीए, हर आए वसे मन चित, मैं तर नाम आधार गए,

आय रंगरत्न हारंगरत हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत हर हाव जिनको पूर्व लिखिया ते आए मिले गुरपास सेवक पाए बणजारिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रकास तन तन वणज वापारिया जिन वखर लदेड़ा हर रास गुरमुखां दरमुख उजले ते आए मिले हर पास जन नानक गुर तिन पाया जिन्ना आत तुटा गुणतास हर त्यावो साज करास।

जननी जानत सुध बड़ा होत है, इतना को ना जाने, जे दिन दिन अवध कटत है, मोर मोर कर अटक लागत तार, पेगत ही जामरा हसे, ऐसा तय जग परमलाया, कैसे बूझे जा मोया गए माया रखाओ, कैद कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत नेचो मरना, रमैया जपो प्राणी, अंत जीवन बाणी, एन वेद पवसागर तरना, जत पावे तां लागे पाओ, परम पुलाव चों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे, इत संगत ना ही मरना, हुं पछाण तां खसमें मिलना, रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अग लड़ा प्राणी, जरा मरण पो मिसर गया, कुटंब देख विसे कमला ज्यों, पर कर जोग है कपट नरा, दूड़ा आयोह जमह तना, दिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले भाड़ी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाव, अनक अनक भोगराज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेत सनाही, जन्म गवायो आलसिया, बिगम कोर पंथ चलना प्राणी, रवस तय ना प्रवेशन, माया मोह तब सर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरे मन प्रगट पया है, पेखियले तमराओ, तय करदल करन महाबली, तिन आगलड़े में रहन ना जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वण त्रिण रतड़ा नारायण, ऐ जी तू आपे सब के जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया, श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया, आप किस कहन न जाई, छोड़ नाल गणक दर्बजन मोह, तिर पौन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रखाओ, पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश एक पाया, जमे तार चोया त निर्मल, रसमय रसन चोआया, ए जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कमन है राजा, ऐसे गण प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग रत और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता।

अपनवा। अय कृपाल गोविंद गुसाई, मेघ वरसे सब नहीं थाई, दीन दयाल सदा कृपाला, ठाण पई करतारे जियो, अपने जी जन प्रतपारे, जो बारक माता सम्हारे, दुख पंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारे जियो, जल थल पूरया मेहरबाना, सद बलिहार जायगे कुरबाना, रैन दिनस तेस सदा त्याई, जे खिर में सगल उधारे जियो, राख लिखे सगले पव्यापे, उतर गए सब सोग संतापे, नाम जपत मंत्र हरियावल, प्रभ नानक नदर निहारे जियो, माज महला पंजवा, जिथे नाम जपिए प्रप्यारे, से अस्तल सोयन चौबारे, जिथे नाम न जपिए मेरे गोविंदा, से ही नगर उजाड़ी जियो, हर रुखी रोटी खाए समाले, हर अंतर बहार नदर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, ज्ञान विसु की वाड़ी जियो, संता से तीरंग न लाए, सागर संग वे कर्म कमाए, दुलाब देखो ही अज्ञानी, जड़ अपनी आप पाड़ी जियो, तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, हर कृपा नान गुण गावे, राखो शर्म असाड़ी जियो, माज महला पंजवा, चरण ठाकुर किरदे सुमाने, कल करे सब दूर पयाने, सांत सुख सहत उपजी, साधु संग ने मासा जियो, लागी प्रीत ना टूटे मुले, हर अंतर भर रहा पर पूरे, सेमर सेमर सिमर गुण गावा, काटी जमकी फासा जियो, अमृत वर्ख है अनहद बाणी, मन तन अंतर सांस वाणी, तृप्त अगाए रहे जन तेरे, सगुरु किया दिलासा जियो, जिसका सा तिस्ते फल पाया, कर कृपा प्रसंग मिलाया, आमन जान रहे वडभागी, नानक पूर्ण आसा जियो, माज महला पंजवा, मीहो पया परमेश्वर पाया, जी जंत सब सुखी वसाया, गया कलेस भया सो साचा, हर घर नाम संभाली जियो, जिसके से तिन्ही

प्रकाश हुआ जी अन दिन हर गुण गावन यहाँ रखाओ तन मन खोजे ता ना ओ पाए ताप्त राखे ठाक रखाए गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर।

लागी परम पुहलानी अग्ञानी अंधा मगना जाने फेर फेर आमन जामने आ गुर सेवा ते सदा सुख पाया होमे मेरा ठाकुर खाया गुर साही मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलामने आ होमे मार मन मसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ध्यावने आ जीवन मरना सब तुदे ताई जिस बगसे ते दे वडियाई नानक नाम ध्याय सदा तू जमन मरण सवारने आ माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगमे पारा बिन तकड़ी तो ले संसारा गुरमुख होवे सोई बूझे गुण कह गुणी समावने आ होवारी जीव वारी हर का नाम मन सामने आ जो सच लागे से अनदन जागे।

अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रव कौ सेम दे तिन कै सद बलिहार संत अराधन ससदा सबना का बगसिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दित्ती अन जिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन ना जाई है परमेसर बेअंत जिस मन वसे नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जी वे जप हरी दोग सबे ही हंत दिन रहन जिस नाम विसर है सो हरिया हो वै जंत सर्व कला प्रापूर्ण मन ने माणी थाओ हर ओढ़ गई मन अंदर है जप जप जी मान आओ हर कृपा प्रवे अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राख है त्यों रहा तेरा दिता पहना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मिलिए नान क्यों सुआओ सर्व कल्याणा तित देन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मरीद तथा चंदहरड़ा सुया की तुनी गामणी एक ओंकार सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर हेवे कर गुरदीप कथे लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला पहले प्यार लगातन दुध दूजे माए बाप की सुध तीजे भैया भाभी बेब चौथे प्यार उपन्नी खेड़ पंजवें खान पीन की तात छेवे काम न पुछे जात सतवें संज किया करवास अठवें क्रोध हुआ तन नास नावे तौले उबे सह दसवें दद्दा हुआ स्वाह गए से गीत पुकारी तह उड्या हंस दसाए राह आया गया मुया नाव पिछे पत्तल सद्यो काव नानक मानमुख अंध प्यार बाज गुरु डुब्बा संसार महला पहला दस बालतन बीस रवन तीसा का सुंदर कहावे चालीसी पुर होए पचासी पग खिसे सठी के बो ढेपा आवे सत्तर का मतहीन असिया का व्यवहार ना पावे नवे का सहजसनी मूल ना जाने अब बाल टंडोल मा टूंड में डिठ में नानक जग तूए का तबल हार पौड़ी तू करता पुरख अगम है आप सृष्टि उपाति रंग परंग उपार्जना बोभो बद पाती तू जाने जेन उपाई है सब खेल तुमाती एक आवे एक जाए उठ बिन नावे मर जाती गुरमुख रंग चुलूलिया रंग हर रंग राती तो सेवो सत नरंजनो हर पुरख विधाती तू आपे आस जान है वड पुरख वडाती जो मन चे तुद त्याएं दे मेरे सचिया बल बल हों तिन जाती।

असंत अनाड़ी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै, अंध अग्ञानी कदे ना सीझै। इस जुग में राम नाम निस्तारा, विरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप करै सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म तर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम

तुम ऐसे परम चुकाही, जोगश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाए समाही, हरहाओ स्त्री पुरख होए कै, क्या वे कर्म कुमाही, नाना रूप सदा है तेरे, तुझगी मह सुमाही, इतने जन्म फूल परे से, जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य तोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा

हमें आप गुणियारे, हर शरणागत राख लेहो, मूढ़ मुग्ध निस्तारे, सहज आनंद सदा गुरुमति, हर घर मन त्याया, सज्जन घर प्रापाया, कर सोई लागाया।

जानकी उमा तुझे वडाइया रहाओ। मंदर कर आनंद हर, हर जस मन भावे, सबस मीठे मुख लगे जा हर गुण गावे। हर जन परिवार सुधार है, एक ही कुली सब जगत छिड़ावे। जो किया सो हर किया, हर की वडियाई, हर जी तेरे तू वरतदा। हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाएंदा, आपे वरताई लाला।

हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गुण तन आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लय हर पावे। हम पराधी राखे गुर संगति, उपदे दियो हर नाम छिड़ावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले ता विस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अबर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छिड़ाए। तू गुर पिता तू है गुरु माता, तू गुर बंधप मेरा सगा सगाए। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम घर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता,

किश रूप नहीं, किस जात नहीं, किश टंग ना मेरा, क्या मुंह ले बोले गुण बिहून, नंद पिया ना तेरा, हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन्न भुगानी, जिन दिए सो चित न आवी, पशु हो कर जानी, सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर जामी, हम जंत विचारे क्या करे, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हाट विहाजया, हार गुलम गुलामी, गौड़ी बैरागण मखला चौथा, जो जननी सो जन पालती, राखे नदर मजहार, अंतर बार मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार, तू सतगुर गुरसिख राखता, हर प्रीत प्यार, मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं इयाने, तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा, जिन हर उपदेह दे किए

आओ जो हमारे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदन नाम जपी सुख पाई निर्जीव आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंथ बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदन अंध पया बड़भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया के।

आहे, हर जन हर हर नाम समान, दुख जन्म मरण पव खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रातेरे, हर राख राख वड़ वड़ा है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नाम में ही शुभ मंडा है, गौड़ी पूर्वी मोहल्ला चौथा, इस गढ़ में हर राम राय है।

मेरे हीरे प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगोरे आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विचाया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुरदर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हिरदे गुरमतरा मरसायण जेवा हर गुण गावे। मन रसक रसक रस आघाने फिर बोर ना पूख लगावे। कोई करे उपाप अनेक भो तेरे बिन कृपा नाम ना पावे। जन नानक हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दिरड़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम करामा। संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा। वड़पागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो। गोर हारंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो। वड़पागी मिल सूड सुजानी जियो। मेरा मन तनहा रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा। वे संगत नाम सदा ले लाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखड़े तुर कर्मा तामन वर्ष अमृत जग छाया जियो। मन मोर को केड़ा शब्द मुख पाया। हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा। आओ सभी गुण कामन करी हा जियो। मिल संत जना रंगमाने रलिया जियो। पुर दीप ज्ञान सदा मन बरिया जियो। हर तुठे टोल